नमस्कार। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोतो, आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून 2028। 25 जून 2026 के हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के अतिरिक्त FM के 100.1 मेगाहर्ट्ज, DRM के 909 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप पर न्यूज़ ऑन AIR नाम के ऐप से उपलब्ध हैं। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग पर आप हमें सुन सकते हैं।

0: 918 किलो हर्ट्ज मीडियम वेव 326.72 मीटर्स पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। भोर के 6 बजे चाहते हैं अब हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तत्पश्चात भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप सुन पाएंगे। कृपया समाचार बुलेटिन की प्रतीक्षा करें।
1: वाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित

सभी श्रोताओं का इस मधुर वेला में अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। श्रोतो, आज का दिन गुरुवार का दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी का दिन। आज का दिन निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। एक आख्यान है कि महाबली भीम ने, जो कि हमेशा बलिष्ठ थे और शरीर उनका भारी था, तो भूखे नहीं रह सकते थे, एक बार प्रभु से पूछा कि प्रभु, ये जो उपवास और जप तप है, यह सब मेरे बस की बात नहीं, मुझे तो कोई आप सरल सा उपाय बताएं। तब भगवान ने अपने श्रीमुख से ऐसा उच्चारित किया कि ज्येष्ठ मास के एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति उपवास करता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, समाज हित में काम करता है, तो उसे अक्षय पुण्य का फल मिलेगा और उसे मेरे खुद के वैकुंठ धाम में वास मिलेगा। कहने का भाव यह है कि आज का दिन विशिष्ट है,

जहाँ तक हो सके हमें संकल्प करना चाहिए कि मन वचन काया से हम किसी भी जीव का दिल न दुखाएं और प्रभु सिमरन में हमारा पूरा दिन बीते।

बोल पिंजरे का तोता राम, हरे राम सिया राम राधे श्याम, नाम चाहे कोई भी ले ले, जैसे सूरज को आप भानु कहें, दिन कर रहे रवि कहें, भास्कर मार्तंड किसी भी नाम से पुकारे, सूर्य अपने तेज के कारण जाना जाता है, वही उसका प्रभाव है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम सिर्फ संज्ञा है, संबोधन है, एक पहचान का तरीका है। इसी प्रकार परमात्मा जो कि इस चराचर जगत के कण कण में मौजूद है, आप में भी वही है जो किसी दूसरे प्राणी में है, तो क्यों ना हम एक दूसरे के भीतर मौजूद उस परम तत्व का सम्मान करें, उसे आदर दें, उसे पहचानने का प्रयास करें। यह जो झूठे लड़ाई झगड़े द्वंद्व फसाद तेरा मेरा सब क्यों,

कहां आवश्यकता है। एक बात याद आई, लेकिन उसका जिक्र हम करेंगे सुबह 7:30 बजे के प्रोग्राम सुप्रभात में। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वंदना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रभु से बड़े हृदय के करुणतम भावों से ये पूछें कि हे मेरे मालिक, जब आप मेरे सब कुछ हो, मैं आपसे ही हूं, तो विपदा और संकट की घड़ी में मेरा साथी आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? मैं किसके दर पर जाकर पुकारूं? कौन है जो मुझे सहारा देगा? जब आपको हमने कहा है हारे का सहारा, तो क्यों नहीं आप हमारी पुकार सुनते? आइए इन्हीं भावों को समेटे ये भक्ति रचना सुनें।

भक्ति रचनाओं का प्रोग्राम वंदना इस समय आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से प्रसारित किया जा रहा है मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। श्रोतो, इस संसार को चलाने वाली आदि शक्ति मां भवानी, इनके मंदिर सामान्यतः दुर्गम स्थानों पर

ऊंची पहाड़ियों पर है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जितनी दुख तकलीफ रास्ते में होती है उससे कई गुना ज्यादा सुकून मिलता है। भक्त जयकारे लगाते, मां का नाम पुकारते, उन्हें याद करते श्रद्धा भाव के साथ जब मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं तो नजारा देखने वाला होता है।

0: भक्ति आराधना का नियमित कार्यक्रम वंदना आपने सुना आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से 918 किलोहर्ट्ज पर। और यह समय है आध्यात्मिक दर्शन के दैनिक कार्यक्रम चिंतन का, आइए सुने।
1: आज इस संसार के अंदर मानव एक तन तक सीमित रह गया है। दिखने में प्रत्येक इंसान इंसान नजर आता है, लेकिन इंसानियत नाम की वो चीज़ उस इंसान के अंदर, इंसानियत नाम का वो गुण आज खत्म हो चुका है। और इस भौतिक दौड़ के अंदर इंसान आज इतनी तेज़ी से दौड़ता जा रहा है कि वो दौड़ते दौड़ते अपने आधार से दूर हो चुका है। और हमारे संत महापुरुष इस बात पे जोर देते हैं कि जब एक इंसान अपने आधार से टूटता है तो उसके जीवन के अंदर दुखों का आगमन होता है, और वो दुख इंसान अपने ही कर्मों के द्वारा भुगतता है, अपने ही कर्मों के आधार पर उन दुखों की प्राप्ति करता है। क्योंकि इंसान सच में सुख को जानता नहीं है। जब जब ये इंसानियत इस दुख के पड़ाव पे पहुंची, तब तब इस धारा के ऊपर एक ब्रह्मनिष्ठ उस ईश्वर को इस धारा के ऊपर अवतार धारण करना पड़ा, और फिर से उस मानव को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ अपने मूल के साथ जोड़ते हैं, जिससे आज का प्रत्येक इंसान दूर है। क्योंकि इंसान को शांति और समाज को क्रांति, आज इन दोनों पहलुओं की, इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। इंसान सुख की खोज तो करता है, लेकिन उस सुख को जानता नहीं कि वो सुख है कहाँ। कहते हैं हमारे संत महापुरुष कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विद आवे हाथ।

0: कि इंसान खोज करता है सुख की संसार से, लेकिन इस संसार ने आज तक सुख दिया किसको है? अगर आप बड़े से बड़े एक राजा को भी देखते हैं तो वो सम्राट भी दुखी है, एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी दुखी है। इंसान की ये तृष्णा दुख का कारण बन चुकी है। और कहते कि जब तक इंसान अपने बारे में नहीं जानता, अपने आप को नहीं जान लेता है, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। और उसके जीवन में जब एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु आता है, संत आता है, उसको जीवन जीने की वो कला देता है जिस कला से बिछड़ता है। हमारे संत महापुरुष इंसान को बार बार चेताते हैं कि आप जागो जागो, लेकिन इंसान जाग नहीं पाता है। कारण, क्योंकि वो एक ऐसी निंद्रा में है। अगर वो इंसान को हम जगाना चाहते हैं, उसके जीवन के अंदर एक ऐसे इंसान का पदार्पण हो, ऐसा एक इंसान उसके जीवन में आए जो खुद जागा हुआ है, जब एक जागा हुआ व्यक्ति उसके जीवन में आता है, वही उसको उठाता है। और आज पूरा संसार सोया हुआ है, और इस संसार को जगाने के लिए ईश्वरीय सत्ता को फिर से इस धरा के ऊपर आना पड़ता है, और फिर उसको जगाकर उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराकर, जब इंसान को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस सुख का अनुभव, वो अनुभूति अपने घट में करता है, क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं। इंसान बाहर सुख ढूंढता है, लेकिन सुख उसके हृदय में है। कि जैसे एक मृग है, मृग उस कस्तूरी की खोज करता है, उसे खुशबू आती है, वो घास फूस अनेकों में जाकर उस खुशबू को ढूंढता है, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ होता है कि जिस कस्तूरी की खोज वो बाहर करता है, वही कस्तूरी उसके नाभि के अंदर है, और इसी खोज के अंदर वो एक दिन उस मौत को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं, अगर आप सुखी होना चाहते हैं, आपको संत महापुरुषों के उसी मार्ग पे फिर आना पड़ेगा, वो पंथ वो रास्ता फिर अपनाना पड़ेगा जो रास्ता हमारे संत महापुरुषों के पास था। अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो उस सुख को देने वाले उस परमात्मा को जान लो, जिसके बारे में हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि सब सुख दाता राम है, दूसर नहीं कोई।
1: कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। आज का चिंतन आपने सुना, आलेख और वाचक स्वर थे स्वामी धर्मेंद्रनंद के। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित होने वाले बाकी कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों पश्चात यानी 6:55 पर संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। 7:10 पर प्रगतिशील किसान भाई सुनेंगे खेतिया नमस्ते कार्यक्रम। मानस गान आप सुना करते हैं प्रत्येक सुबह 7:20 पर। लोकप्रिय कार्यक्रम सुप्रभात आपके लिए प्रसारित किया जाएगा 6:30। 8 बजे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज 8:15 और खबरनामा 8:30 दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सुगम संगीत रचनाएं कुछ सुने जा सकती हैं 8:45 पर। सुबह 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 9:10 पर मरुमंगल कार्यक्रम होगा, कलाकार होंगे सुहन प्रकाश। फिल्मी गाने सुबह 9:30 से सुनवाए जाएंगे। 10 बजे होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। 11 बजे फिल्म संगीत सुनाया जाएगा। 12:05 पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे। सुगम संगीत सुनिएगा 12:30 पर। खेत खलिहान में जानकारी दी जाएगी, मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय। प्रसारण समय होगा दिन में 12:50। दोपहर बाद 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। महिला जगत कार्यक्रम लेकर सविता कुमारी हाजिर होंगे दिन में 1:05 पर। आज के कार्यक्रम में कुछ जानकारियां दी जाएंगी, जैसे कि पौष्टिकता से भरपूर जुकीनी, मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में क्या करें, स्वस्थ जीवन जीने के क्या उपाय हो सकते हैं, पानी की बचत का क्या महत्व है, और इसी तरह के बहुत से दूसरे भी महत्वपूर्ण विषय कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के मनोरंजन हेतु कुछ गीत भी सुनवाए जाएंगे। दिन में 2 बजे मिड डे न्यूज़, दोपहर समाचार 2:15 पर दिल्ली से रिले किए जाएंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा 2:30 पर। उर्दू सर्विस के प्रसारण आपके लिए उपलब्ध होंगे दोपहर बाद 3 बजे से। संध्या 4 बजे संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम होगा। युववाणी में आज के इतिहास के साथ ही भारत की मुख्य रतियों और सभ्यता स्थल कालीबंगा के बारे में जानकारी दी जाएगी। जीवन में

0: विचारों का क्या महत्व है, किस तरह से विचारों को बदल कर सकारात्मक करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, इस विषय पर बातचीत की जाएगी। साथ ही एक महत्वपूर्ण सामग्री इस कार्यक्रम में उपलब्ध होगी, वो होगी आओ जाने क्रम में जैसलमेर के बारे में जानकारी। युवा श्रोताओं के लिए कुछ फिल्मी गीत भी सुनवाए जाएंगे। सराय की जबान पर आधारित छोक माई हिंदी संध्या 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे। शाम 6:30 हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। श्रोताओं, आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के बीच भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनवाएंगे शाम 7 बजे से खेल की समाप्ति तक। रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार बुलेटिन के पश्चात हमारे प्रसारण संपन्न होंगे रात 11:10 पर। कार्यक्रम विवरण और स्थानीय सूचनाएं आप सुना करते हैं प्रत्येक सुबह 6:50 पर, दिन में 12 बजे और शाम 6 बजे। इस समय आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को। हमारे मीटर से मीडियम वेव पर 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़। 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन दिल्ली से लेके जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंचस्य 25वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्ग विद्युत औद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूत संरचना प्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानां आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिक विकासं क्षेत्रीय सम्पर्कं औद्योगिक विकासं तथा जनकल्याणं वर्धयितुं संधारिताः एते प्रकल्पाः। समयसीमा विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलम्बित विषयाणां शीघ्र निवारणाय विशेष ध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः। अद्य तावत् संविधान हत्या दिवसो वर्तते। दिवसोयं तस्याः घटनायाः स्मरणं कारयति यदा 75वें वर्षस्य जून मासस्य 25वें दिनांके भारतीय संविधानस्य अवमानना कृता। अनेन सहैव अयं दिवसः आपत्काले अत्याचारैः प्रताडितेभ्यः प्रत्येकं जनेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयितुं दिवसो वर्तते। अस्मिन्नेव दिने तत्कालीनः राष्ट्रपतिः फखरुद्दीन अली अहमदः आन्तरिक अशान्तेः कारणं प्रदर्श्य देशे राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणाम् अकरोत्। देहल्याम् अस्य मासस्य 30 दिनांकात् आरभ्यमाणस्य मतदातृसूचीनां विशेषगहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतं गृहं गृहं गत्वा गणना कार्यक्रममभिलक्ष्य देहल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिण ह्यः नवदिल्ल्यां विभिन्न राजनैतिक दलानां प्रतिनिधिभिः सह एका सभा आहूता। मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः एकेन विवरणेन स्पष्टीकृतं यत् अस्यां गोष्ठ्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलम्, आम आदमी पार्टी इति दलम् तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि प्रमुखाणां राजनैतिक दलानां प्रतिनिधयः समुपस्थिताः आसन्। कार्यालयानुसारं मुख्य निर्वाचनाधिकारी प्रत्यपादयत् यत् कोऽपि योग्यः नागरिकः न वञ्चितः स्यात्, सहैव कोऽपि अयोग्यः जनः मतदात्री सूच्यां न सम्मिलितो भवेत्। अनेन सहैव गणनाचरणे अनुपालनीयानां प्रमुखाणां गतिविधीनां विषयेऽपि राजनैतिकदलानि विस्तरेण सूचितानि। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य देशस्य उत्तरपूर्वीयक्षेत्रे

राज्येषु झारखण्ड महाराष्ट्र ओडिशा उपहिमालय पश्चिमबंग तेलंगाना तटीय कर्नाटक कोंकणम समेत्य गोवा क्षेत्रस्य कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। विभागानुसारं अद्य पश्चिम राजस्थान क्षेत्रे झंझावातस्य संभावना अपि वर्तते। अत्रावधेयं यत् अद्य बिहार पूर्व मध्य प्रदेश पूर्व उत्तर प्रदेशस्य च नाना स्थानेषु उष्ण तरंगस्य अनुमानम् अपि विभागेन अनेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिकरूपेण मेघाच्छादनं नभ भविष्यति। सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः सम्भावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला टी ट्वेंटी विश्व कप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैंचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते। या भारतीय समयानुसारं सायंकाले सप्तवादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू सम्प्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी

पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से

0: counterpart yesterday. Prime Minister Modi thanked him for facilitating the evacuation of Indian nationals stranded in Iran following the recent developments in West Asia. In a social media post, Prime Minister Modi said they reaffirmed the shared commitment to further strengthen the warm and multifaceted partnership between India and Armenia across key sectors. In men's cricket, a two-match multi-day series between India A and Sri Lanka A will begin at Gore International Stadium in Sri Lanka this morning. The match will begin at 10 a.m. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Bangladesh in the Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के कॉर्न सिटी चैनल सूरतगढ़ को। प्रगतिशील किसान भाई सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम खेती ना वास्ते। जानकारी का विषय है पशुओं के लिए उज्ज्वला आहार।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों खेती बाड़ी गए सागे सागे किसान भाई जका खेती शू जुड़ा और भी काम धंधा जका करे जके शू के एक तो अपने खेती शू जुड़ा हुआ है और दूसरा के अपनी किसानों की अर्थव्यवस्था जकी थोड़ी सुदृढ़ हो जाए इन खातर इन शू जुड़ा काम धाम भाई लोग जका करता रहे। पर भावें जी आप वैज्ञानिक ढंग अपनावा या नया तौर तरीका अपनावा तो भी व्यवसाय में भी आप अच्छो लाभ है जको ले सका। अब आप व्यवसाय की बात करा तो किसान भाई जका खेती पाती शू जुड़ो पशु पालन को काम धाम है जको करे और पशु पालन को काम धाम इशू है कि जको हर परिवार है जको थोड़े या बड़े पैमाने पर करे। पर इमें विशेष तौर कई भाई लोग तो इशा है जका पशु पालन को व्यवसाय है जको भी रोजगार है भांगे। पर इमें आप सुनियोजित ढंग से या पशु पालन को काम धाम है जको अच्छी तौर तरीके से करा तो वो भी अपनी कैसे किसान की अर्थव्यवस्था में बड़ो ठोस आधार है जो प्रदान करे। ये पशुओं ने आपा रखा तो मैंने वर्ष भर ती फसल का अवशेष है तूड़ी है नीरो है इन पर आपने पालना पड़े। पर इंग सागे सागे हरियो चारो भी आप टेम सारू दे छठ बारह महीना हरियो चारो लगातार मिले कोनी जके शू पशुओं में बढ़ोतरी है जकी कम हो जाए दूध उत्पादन में कमी आ जाए और इंग सागे सागे प्रजनन क्षमता पर भी इंगो विपरीत प्रभाव पड़े। इन समस्या से निजात पाउन खातर अपने वैज्ञानिक पशुओं खातर अजोला पशु आहार है जो विकसित करो है तो वो आहार के तरीके से आप इन्हें उत्पादन कर सका और क्या वो पशुओं ने खिलाया जाए। अजोला दुधारू पशुओं खातर उत्तम गुणवत्ता युक्त पूरक आहार है। अजोला जल स्तर पर मुक्त रूप से तैरने वाली तेजी से बढ़ने वाली जलीय फर्न है। अजोला छोटे छोटे समूह में सघन हरित गुच्छे की तरह तैरती रहे ओ उत्तम गुणवत्ता युक्त वालो प्रोटीन को अच्छो स्रोत है। पशुओं खातर प्रोटीन को मुख्य स्रोत है। अजोला की पिनाटा जाती है जकी पाई जाए। अजोला सामान्य अवस्था में ओ फर्न 3 दिन में दुगुनी हो जाए। पशुओं खातर आदर्श आहार है। किसान भाइयों अजोला उत्पादन तकनीक के बारे में बातचीत करा। छायादार जिग्या पर आपने 20x3x1 फुट यानी के 20 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी और 1 फुट गहरी आकार की अपने क्यारी जकी बना लेनी चाहिए। इन क्यारी में प्लास्टिक सीट अच्छी तरह बिछा गए और ऊपर के किनारा पर मिट्टी शुभ ने दबा कर मजबूत कर देनी चाहिए। इन क्यारी में 1 इंच मोटी उपजाऊ मिट्टी की परत जकी भी अपने बिछा देनी चाहिए। 5-7 किलोग्राम गोबर जो को 2-3 दिन पुराना होना चाहिए। 10-15 लीटर पानी में घोल बना के मिट्टी में अपने फैला देना चाहिए। क्यारी में 7-8 इंच तक पानी भरना चाहिए जैके शू क्यारी में पानी की गहराई है जैकि लगभग आधे फुट तक हो जाए। अब उपजाऊ मिट्टी और गोबर की खाद ने जल में अच्छी तरह घोल बना के क्यारी में अपने घाल देना चाहिए। इन घोल में 2 किलोग्राम ताजा अजोला ने फैला देनी चाहिए। इनके बाद में 1 लीटर पानी को अच्छी तरह से अजोला पर छिड़काव कर देना चाहिए जैके शू अजोला आपकी सही स्थिति में आ जाए। अब क्यारी ने नायलोन जाली से ढक देनी चाहिए क्योंकि मैं कीड़ा है कागला है या चिड़िया जका खावे ने तो इन्हें नायलोन की जाली से अपने ढक देना चाहिए। 15-20 दिन में अजोला ने की बढ़वार जकी हो जाएगी और 21वें दिन आपने लगभग 1.5-2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन प्राप्त होने लग जाएगा। अभी अजोला ने अच्छी तरह अपने निकाल गए साफ पानी से धो गए दुधारी पशुओं ने देना चाहिए।

0: 1.5 से 2 किलोग्राम ताजा अजोला ने बांटे के माँ खिलाना चाहिए और दुधारू पशुओं ने देना चाहिए, जैके शू 15% तय दूध उत्पादन में जैकी बढ़ोतरी हो जाए। किसान भाइयों पशुओं की शारीरिक वृद्धि में और दूध उत्पादन में वो उत्तम लाभ देवे। शुरू की अवस्था में अजोला की मात्रा प्रति पशु कम देनी चाहिए, धीरे धीरे इन्हें बढ़ानी चाहिए। अजोला में प्रोटीन, रेशा, इथर सत, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम ए तो वही है, इनके सागे सागे अति सूक्ष्म तत्वों की बात करा जहाँ मैग्नीज है, जिंक है, तांबो, लोहा, सोडियम आगे भी पूर्ति हो करे। अब अजोला जो को आप क्यारी में गाले पिंगा रख रखाव का भी अपना तौर तरीका ध्यान में रखना चाहिए। क्यारी में जल स्तर लगभग आधो फुट तक होना चाहिए। 3 महीना में 1 एकड़ पानी और मिट्टी ने बदलते रहना चाहिए, जबकि शू नई क्यारी के रूप में दोबारा संवर्धन हो जाए। अजोला की अच्छी बढ़वार खातर तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। सर्दी की ऋतु में तापमान कम हो जाए तो क्यारी ने पुरानी बोरी या टाट या चादर शू ढक के रखनी चाहिए। 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला की उपज प्राप्त करने खातर आपने 20 ग्राम सुपरफास्फेट और 50 किलोग्राम गोबर को घोल बना के हर महीने क्यारी में अपने मिला देना चाहिए। इसमें अपने हर रोज 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला जैकी प्राप्त हो जाएगी। नई तरह से अजोला आहार देके पशुपालन भाई लोग लाभ है जो को उठा सके। पर अब हूँ चालू, राम राम सा राम राम।
1: पशुओं के लिए संतुलित आहार अजोला, जानकारी आपने सुनी। कार्यक्रम था खेती रास्ते, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए एक लोक भजन सुनें।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। समय हो चला है गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस पर आधारित दैनिक कार्यक्रम मानस गान का। आज प्रस्तुत है भाग 285 मुख्य स्वर अनुराधा पौडवाल सुरेश वाडकर और साथियों के।

राक्षस इतने बलवान और बड़े योद्धा हैं, उन्हें नन्हे नन्हे वानर भला किस प्रकार मार सकेंगे? सीता जी का ये संशय हनुमान ने सुमेरु जैसा अपना आकार दिखाकर पल भर में मिटा दिया। फिर छोटा रूप धारण कर बोले, हे माता, वानरों में बलबुद्धि तो नहीं होती, किंतु प्रभु की कृपा से छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। सीता जी को सभी प्रकार से संतुष्ट करके पवन पुत्र ने अपनी भूख मिटाने के लिए न केवल फल फूलों का आहार करना आरंभ किया, बल्कि इस क्रम में पूरी वाटिका ही उजाड़ डाली। रोक टोक करने वाले रखवालों को मसल कुचल कर मार डाला। विध्वंस का समाचार सुनकर रावण ने बंदर को पकड़ लाने के लिए योद्धा भेजे। उनका संहार सुन अपने पुत्र अक्षय कुमार को पठाया। एक भयंकर गर्जन के साथ जब हनुमान ने एक वृक्ष उखाड़कर उसे भी मार डाला, तो रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को आदेश दिया कि वो जाकर उस वानर को बांध कर ले आए।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में मानस गाना आपने सुना। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है लोकप्रिय कार्यक्रम सुप्रभात।

सभी सुनने वालों को नमस्कार, प्यार भरा आदाब। आपके अपने रेडियो दोस्त कमल पारिक की तरफ से मित्रों, पच्चीस जून 2026 का आज का दिन, सुंदर सुहाना मौसम और भोर की इस वेला में गीत संगीत का, कुछ आपसी बातचीत का प्रोग्राम सुप्रभात। दोस्तों, मनुष्य ने जब कभी भी भाषा का विकास किया, आविष्कार किया, तो उसके बाद में उसे लगा होगा कि मात्र अपने बात को, अपने विचार को संप्रेषित करने के लिए भाषा पर्याप्त नहीं है। तो उसने संगीत से अपनी वाणी को, अपनी भाषा को, अपनी लेखनी को सजाया होगा, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने मूड को, अपनी मनोदशा को परिवर्तित कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बात

बातें जो आप बोल करके व्यक्त नहीं कर सकते, वो किसी गाने के माध्यम से आप संप्रेषित कर सकते हैं। गीत की इतनी ताकत होती है कि गीत के माध्यम से व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित किया जा सकता है। संगीत के सात सुर, सा से लेकर नी तक, इन्हीं पर आधारित सरगम और सात सुरों से निकले अनेक राग, अनेक थाट, विभिन्न तरह की बंदिशें जो गाने और बजाने दोनों में काम में आती हैं। संगीत जो अपने आप में एक भाषा है, एक कला है, एक विज्ञान है, एक संस्कृति है, एक पहचान है। कहीं कोई धुन बजती है तो आपको लगता है यह पहाड़ी धुन है, कहीं कोई मीठी सी बांसुरी की तान जब आप सुनते हैं तो अचानक आपके मन में भाव आता है कि यह निश्चित रूप से कोई भजन होगा। कहीं कोई दुख का भाव है तो उसमें सामान्यतः वायलिन का इस्तेमाल किया जाता है। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, अनेक प्रकार की धुनें, अनेक प्रकार के मौसम, अनेक प्रकार के मनोभाव, और उन सबको व्यक्त करता संगीत। कितनी विचित्र बात है, भगवान शंकर के डमरू के नाद से निकला संगीत और हिंदुस्तान का संगीत में सबसे बड़ा योगदान। हिंदुस्तान ने संसार को सरगम दी, हिंदुस्तान ने तानसेन जैसे गायक दिए, बैजू बावरा जैसे उस्ताद हमारे यहां हुए, तबला, सितार, बांसुरी, ढोलक, मृदंग, न जाने कितने वाद्य यंत्र। अगर आप संतूर सुनने बैठ जाएं तो आप वहां से हिल नहीं पाएंगे। जल तरंग की बात करें, कटोरियों में जल और जल के पात्रों पर धीमे धीमे प्रहार करती छोटी छोटी डंडियां और उनसे उत्पन्न होता मधुर संगीत। कल्पना करके देखें, न कोई ज्यादा खर्चा, न कोई तामझाम। अच्छा, संगीत की एक खास बात जो आपने भी महसूस की होगी कि जब एक संतुलित आवाज, एक धीमी आवाज हमारे कानों में आती है और एक लयबद्ध तरीके से, तो वह जो रचना है, वह संगीत हमें कर्णप्रिय लगता है, हमारे मन को अनुकूल लगता है, हमें भाता है। वहीं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वाली, बहुत ज़्यादा कान फोड़ू संगीत किसी को नहीं सुहाता। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको कोई गाना अच्छा लग रहा है, आपको कोई बात अच्छी लग रही है, तो अपने रेडियो सेट की आवाज़ को मध्यम रखें ताकि दूसरा आदमी बाधित न हो और आप पूरा आनंद ले सकें। अब कार्यक्रम में बातें हम आपसे करेंगे लगातार, लेकिन पहले एक गीत सुन लें जिसकी धुन आपने सुनी थी, रामलाल की बनाई हुई, प्रोग्राम के शुरू में, शब्द हसरत जयपुरी के हैं, आवाज़ किशोरी अमोनकर और साथियों की, और ये टाइटल सॉन्ग है, गीत गाया पत्थरों ने फिल्म से।

शुरू, क्या आपको पता है कि आज संविधान हत्या दिवस है? जी हाँ, सुनकर आपको कुछ विचित्र लगेगा, आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में जानने का प्रयास करें जो आपके आसपास

पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे चर्चा करें, या आपके पास खोज करने के जो दूसरे तरीके हैं उनसे आप खोज करके देखें और इसके बारे में जानें। कार्यक्रम की शुरुआत हमने जो की थी संगीत के बारे में चर्चा से, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। संगीत हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव डालता है। बहुत से लोग इस तरह के हमारे आसपास होते हैं, हमारे परिवार में होते हैं, जिन्हें अनिद्रा की, नींद ना आने की, इंसोमेनिया की बीमारी होती है, या दूसरे मानसिक रोग कुछ अल्प मात्रा में हम पर प्रभाव डालते हैं। उन सबसे बचने के लिए सबसे बढ़िया विधि है संगीत। जो म्यूजिक आपको अच्छा लगता हो, जो खुशनुमा हो, जो मोटिवेशनल आपको लगे, इस तरह का गीत आप धीमी धीमी आवाज में सुने। रात को सोते समय कोई सुंदर सा स्तोत्र अगर सुना जाए, कोई मीठी सी भजन की धुन जो आपको पसंद हो, उसे आप सुनते हुए अगर सोते हैं, तो नींद आने की और गहरी नींद आने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। गीत और संगीत अपने आप में एक औषधि है। प्राचीन समय में जब राजा महाराजा ऋषि मुनि जिस तरह की आवश्यकता होती थी उसी के अनुरूप वातावरण संगीत के माध्यम से उत्पन्न कर देते थे। कहते हैं कि इस तरह के संगीतकार हुए हैं जिन्होंने जब दीपक राग गाया तो महलों में रखे हुए दीप अपने आप जल उठे। कुछ ऐसे गायक हुए हैं कि जब उन्होंने राग मल्हार को छेड़ा तो बिना मौसम के अचानक उमड़ घुमड़ कर घटाएं आई, बादल आए, मूसलाधार बरसात हुई। तो संगीत की ताकत कम नहीं है। युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते हुए वीर पुरुष को हमारे इतिहास में वर्णित है कि उस समय के जो गीतकार थे वो जोशीली कविताएं सुनाते थे, मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए प्रेरित करने वाले गीतों को सुनाया जाता था, नगाड़े, दुंदुभी और विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र युद्ध की भूमि में जाते थे, उनका वादन किया जाता था और फिर युद्ध का आरंभ होता था। विभिन्न तरह के जोशीले नारे, विभिन्न तरह के जय घोष, किसी भी सैनिक में उसको पराक्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। संगीत की ताकत अद्भुत है। संगीत की इस शक्ति को हमारा नमन है।

श्रोतो, इस समय आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 928 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही हमारे प्रसारण आपके लिए एफएम के 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीआरएम मोड पर 909 किलोहर्ट्ज पर और आपके अपने हाथ में मौजूद मोबाइल पर न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से जारी है। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं। जैसा कि हमने सुबह वंदना कार्यक्रम में आपको कहा था कि सुप्रभात कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे किस्से की जो आज प्रभात वेला में हमें याद आया था। बात कुछ यूं है कि सड़क के किनारे एक कोई तरबूज का ढेर था। उसके पास में एक छोटी बच्ची बैठी थी, अपने हाथ में अपनी पाठ्यपुस्तक लिए शायद अपना होमवर्क कर रही थी। एक कार आकर के उसके पास में रुकी। कार में एक दंपत्ति और उनका एक छोटा बच्चा। बच्चे ने कहीं देख लिया होगा कि तरबूज बिक रहे हैं, उसका मन हुआ होगा, या उन दंपत्ति में से किसी ने ऐसी ख्वाहिश रखी होगी कि तरबूज लिया जाए। वहां पहुंचकर खिड़की का शीशा नीचा करके महिला ने बाहर मुंह निकालते हुए उस बच्ची को कहा कि तरबूज किस भाव से दे रही हो। बच्ची ने बड़े सहज तरीके से जवाब दिया कि 40 रुपए का एक तरबूज, या 50 का, या जो भी दाम उस समय उसने बताया। महिला ने, जैसा कि एक सामान्य इंसान का स्वभाव होता है, थोड़ा सा मोल भाव करते हुए कहा कि नहीं, 40 रुपया तो ज़्यादा है, कुछ कम पैसा आप मेरे से चार्ज करो। बच्ची ने कहा कि साहब, तरबूज हम लोग जो थोक में मंगवाते हैं तो लगभग 34-35 रुपये की लागत हमारे यहाँ पर पड़ती है, और मात्र 4-5 रुपया अपना नफा लेकर के हम इसे बेचते हैं, और 40 से कम में मैं नहीं दे पाऊंगी। इस तरह की हल्की सी उनके बीच में मोल भाव की बात होती है। तभी बच्चा उनकी बातें सुनकर के उकता जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तरबूज लेना है। उसकी मम्मी ने उसकी बात को अनसुना किया। बच्चे ने आओ देखा न ताओ तपाक से उस बच्ची को कहा कि दीदी, मुझे तरबूज खाना है। पता नहीं कैसे बच्ची के मन में भाव उत्पन्न हुए। उसने उठा करके एक तरबूज ला करके उस बच्चे को दिया। महिला ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था मैं 40 रुपये नहीं दूंगी, 40 रुपये ज़्यादा हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में जब वो बच्ची उस बच्चे को तरबूज पकड़ाने लगी तो तरबूज उसके हाथ से छूट करके नीचे गिर गया और फूट गया। महिला ने कहा कि इस फूटे हुए तरबूज का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, इसके भुगतान तुम मेरे से नहीं ले पाओगी, मैं नहीं दूंगी।

0: बच्ची ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे हाथ से नुकसान हुआ है, मैंने आपसे भुगतान मांगा भी नहीं। उसने तपाक से दूसरा तरबूज उठा करके और खिड़की के अंदर से उस बच्चे के पास में रख दिया उसकी सीट पर, और उसके गाल पर प्यार से हल्की सी थपकी देते हुए कहा कि इसने मुझे भाई बोला है, इसलिए इसका कोई मोल भाव नहीं है, और ये तरबूज मैं इसको उपहार के रूप में देती हूँ। कहाँ मोल भाव चल रहा था, कहाँ भाव परिवर्तित हुए और तरबूज उस बच्चे को मिला। तो कहने का मतलब यही है कि अच्छे विचारों के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो परिस्थितियां और भाव बदल जाते हैं और काम सफल हो जाता है। लेकिन अब कार्यक्रम में समय हमारे पास इतना है कि हम आपसे अलविदा लें और आप सुने समाचार। सुबह 9:30 बजे फिल्मी गीत लेकर हम आपके
1: आकाशवाणी
0: सामने
1: से
0: फिल्म पर।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस

0: दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन

0: जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
1: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
2: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े कचरों को लेके पड़ाव था उसमें संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक

0: 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। TB उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के

0: observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lippu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. US federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खाते में और साइबर धोखाधही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थीं। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। वेनेजुएला में आज सुबह 7.5 की शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया जिससे कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए आईसीटी पर मबनी प्लेटफॉर्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखादेही की शिकायतों का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखादेही से सख्ती से निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 4 रियासतों में सड़क, बिजली, सनअती कॉरिडोर और मेट्रो रेल शोबों में 4 बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी में इजाफा करना, सनअती तरक्की को आगे बढ़ाना और आवामी फलाह बहबूद वगैरह शामिल हैं। वजीर आजम ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताखीर की वजह से लागत में इजाफा होगा और शहरी बरवक्त फवायद से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने वजारतों और रियासती सरकारों को हिदायत दी कि वो एक मोड मिशन में जेर इल्तवा मामला हल करें और उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने मनसूबों की निगरानी और बेहतर मनसूबाबंदी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ का भी जायजा लिया और बेदारी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कोशिशों में एनसीसी कैडेट्स और माई भारत रजाकारों को शामिल करने की भी तजवीज़ रखी। वजीर आजम ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मजबूत तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने साइबर धोखाधेही के मामलों पर तेज़ी से काम करने के लिए E0 FIR मैकेनिज्म के निफाज और अवामी बेदारी मुहिम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नई दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून साल 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफ़ा 352 के तहत मुल्क में कौमी एमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस एमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था जिसने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क़यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत व जवाब को नुकसान पहुँचाया गया था। इसके नतीजे में आमिला ने मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज़्यादा कंट्रोल हो गया था। एमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफ़ुज़ात को दफ़ा 358 के तहत मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीर और इजहार राय की आज़ादी एक

0: जगह जमा होने और आने जाने की आज़ादी समेत उन हकूक को ख़त्म कर दिया गया था जिसकी जमानत दफ़ा 19 के तहत दी गई थी। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई करने के हकूक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिस कर दी गई थी। यहाँ तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया था जो प्रेस की आज़ादी की तहफ़ का एक कानूनी इदारा है। इसी मुद्दत के दौरान आइनी तरमीम के जरिए एमरजेंसी का ऐलान करने के सदर जमहूरिया के फैसले पर सवाल करने से रोक दिया गया था और वज़ीर आज़म लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब को अदालती जाँच पड़ताल से मुस्तस्ना कर दिया गया था। सकाफत की वजारत आज नई दिल्ली में चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम कर रही है जो एमरजेंसी के निफाज के बाद से 50 साल मुकम्मल होने का एक मौका है। इस मौके पर संविधान हत्या दिवस के साथ जमहूरियत हमेशा कायम रहे से मुतालिक एक नुमाइश के अलावा संविधान हत्या दिवस पर एक मुख्तसर फिल्म की नुमाइश की जाएगी। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर।
1: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत के तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होने की तवक्को है। पिथौरागढ़ जिले में थारचूला इंतजामिया के मुताबिक भारतीय ताजिरों का पहला दस्ता कल तिब्बत में तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तजारती अफसर और धारचूला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM आशीष जोशी ने कहा कि पहले मरहले के तहत 26 तजारती पास जारी किए गए हैं जिनमें 17 ताजिर और 9 मुआविन शामिल हैं। गंजी में इस अमल में सहूलत के लिए एक कस्टम ऑफिस भी खोला गया है। जनाब जोशी ने कहा कि ताजिरों ने लिपु लेक दर्रे के नज़दीक वाके गांव के गोदामों में पहले ही अपनी अशिया जमा कर ली हैं। इंतजामिया को 103 से ज़्यादा ताजिरों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दूसरे मरहले के तहत दीगर 25 ताजिरों को इजाज़त दी जाएगी। ताजिरों की मदद के लिए इंतजामिया ने लिपु लेक दर्रे तक अशिया की नकल व हमल की गरज से नबी ढांग के नज़दीक खच्चरों और घोड़ों का भी इंतजाम किया गया है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नबी ढांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: भारत चीन सरहदी तजारत का आगाज पहले 1991 में हुआ था लेकिन 2020 में COVID-19 वबा के मद्देनजर इसे मुअत्तल कर दिया गया था। आकाशवाणी न्यूज देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू आज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मुल्क की पहली हब एंड स्पोक बैन अल-अक़वामी फजाई खिदमात का आगाज करेंगे। वो कल काशी पहुंचे थे और उन्होंने हवाई अड्डे पर बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी मुआयना किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत अपनी ब्रिक्स सदारत 2026 के तहत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स वुजराए तवानाई की मीटिंग की मेजबानी करेगा। दो रोजा मीटिंग में 3 अहम तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक रसाई और मुशावरत, नीस टेक्नोलॉजी और इख्तिरा शामिल हैं। ब्रिक्स के तमाम रुकन मुमालिक के तवानाई के वुजरा और सीनियर अफसरान अहम शोबों में तआवुन को मजबूत करने के लिए इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत का मौजू लचकदारी, इख्तिरा, तआवुन और पायदारी का क्याम है। देही तरक्की का महकमा आज नई दिल्ली में एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगा जो देही तरक्की में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर मरकूज होगी। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि मजकूरा एक रोज़ा तकरीब भारत के देही इलाकों की तरक्याती ज़रूरियात को जदीद तरीन तकनीकी इख्तिरात से मरबूत करने का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म होगी। नीति आयोग, दी इंडिया AI मिशन, सरकर्दा सनती मुशावरती इदारे और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जैसे कलीदी शराकत दार देही तरक्की को फरोग देने में मसनूई जहानत के इम्कान पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीका के एक विफाकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को इंतखाबात से मुतालिक उनके पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज्यादातर हिस्सों को नाफिज करने से मुस्तकिल तौर पर रोक दिया है जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत के दस्तावेजी सबूत की शर्त की तजवीज़ भी शामिल है। बोस्टन में अमरीकी जिला अदालत की जज डेनिस कैस्पर का ये फैसला दरअसल उनके एक साल पहले जारी करदा अबूरी हुक्म इम्तनाई को मुस्तकिल पाबंदी

0: में तब्दील करता है, जिसमें उन्होंने इंतखाबात में इस्लाहात के लिए जनाब ट्रंप की कई कोशिशों को आरजी तौर पर रोक दिया था। जज कैस्पर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आईन इंतखाबात को मजबूत करने का इख्तियार रियासतों और कांग्रेस को देता है, ना कि सदर को, और उन्होंने मजीद कहा कि जनाब ट्रंप की शराइत इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी करती हैं। वेनेजुएला में याराकाई रियासत के युमारे कस्बे में आज सुबह 7.5 शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक इससे पहले वेनेजुएला में सैन फेलिप में 7.2 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलजले से वेनेजुएला के कराकस में कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में जलजले की शिद्दत काफ़ी महसूस की गई, जिससे जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में शहरियों के तहफ्फुज़ के निज़ाम को अलर्ट कर दिया गया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की राजधानी लंदन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ये दौरा भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती समझौते CETA और अगले महीने की 15 तारीख को कंपेनियन डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के निफाज से कबल हो रहा है। अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल बरतानिया के कारोबार और तजारत के वजीर पीटर काइली के साथ आला सतही बाहमी मीटिंग करेंगे। मुजाकरात के दौरान तजारती मुआहदे के निफाज के लिए तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पेशिनयान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक़िदा पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हममनसब की तरफ से एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाक़यात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। ख्वातीन के ICC T20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से चौथे मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद T20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नैदरलैंड्स को 95 रन से हराया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हार हुई थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबार की शह सुर्खी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने जनूबी कोरिया के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को शह सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है, यकसा नज़रिया, बाहमी एतमाद वाले मुल्कों को मिलकर काम करने की ज़रूरत। अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। अखबार इंकलाब की एक अहम सुर्खी है, अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की, अमरीकी सदर को सियासी झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बेमानी इकदाम करार दिया। इसके अलावा कोलकाता में जेर तामीर गोदाम की छत गिरने से 5 मजदूरों की हलाकत की खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-क़ौमी खबरें इस तरह हैं, इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद पर इंतज़ार कम करना होगा, नेतन्याहू का बयान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और AI पर मबनी TB के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत

0: फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी T20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: नौ सौ अट्ठारह किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कार्यक्रम सुने सुगम संगीत। आज सुने भाई गुरतेज सिंह शांत और साथियों से कुछ शब्द।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वे जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास और विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल जयपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से जुड़े सुरक्षा मानकों और अन्य सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जाए। इस ऐतिहासिक आयोजन को विकास और रोजगार के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आमजन और जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से मुख्य समारोह से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग और पोर्टल पर आंकड़ों को समय पर अपडेट करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं में देरी और लागत को बढ़ने से रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सक्रिय शासन और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। 4 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश भर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। युवा संसद का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विभिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता, विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। करौली जिले के खंडीप में पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना कल शाम समाप्त हो गया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से समझाइश की। डॉ. मीणा ने किसानों को आश्वस्त किया कि आगामी 6 दिनों के भीतर पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ दिया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन के बाद किसान नेता

0: उन्होंने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।
1: पांचना बांध के पानी को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। कैचमेंट क्षेत्र के 39 गांवों को प्राथमिकता से पानी देने की मांग को लेकर गुडला पांचना संघर्ष समिति बांध पर धरना दे रही थी, जबकि कमांड क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान खंडीप में आंदोलनरत थे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आश्वासन के बाद दोनों पक्षों ने अपना आंदोलन समाप्त और स्थगित कर दिया। अब प्रशासन किसानों के बीच समन्वय बनाकर स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करेगा। मांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं।

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हाल ही में टेक्नीशियन थर्ड के 2163 पदों का अंतिम परिणाम जारी करने के तुरंत बाद ये भर्ती निकाली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये भर्ती बजट घोषणा के अनुरूप की जा रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये नतीजे जारी करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अनुपालना को लेकर जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 31 मार्च तक राजस्थान को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर लाने के लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने आगामी 31 जुलाई तक 4000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने और पुराने कचरे के ढेरों को पूरी तरह हटाने को कहा। साथ ही 31 अक्टूबर तक 1600 ग्राम पंचायतों में कचरे को अलग करने के लिए 4-स्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका मंत्री खुद निरीक्षण करेंगे। उन्होंने वर्ष 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्वच्छता का लक्ष्य रखने और विलायती बबूल उन्मूलन अभियान के लिए सभी विभागों को मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। वे कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहेंगे। निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज निर्जला व्रत रखकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में किला स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। इस अवसर पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। सवाईमाधोपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से लोगों के लिए ठंडे पदार्थ पिलाने की व्यवस्था की गई है। अजमेर में तीर्थराज पुष्कर में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिरों में भजन कीर्तन के आयोजन हो रहे हैं।
1: प्रातःकाल से श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और दान पुण्य के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: उधर पाली जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर में भगवान का 450 किलो आम से विशेष श्रृंगार किया गया है। जयपुर नगर निगम आगामी दिनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फायर एनओसी को लेकर लगातार सर्वे और जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत कल नगम की टीम ने शहर के विभिन्न तरह के 74 भवनों का निरीक्षण किया और कमियां पाए जाने पर 53 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन

0: निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के गौतम सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 9:10 हुए हैं। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम सुने मरो मंगल। कलाकार हैं सोहन प्रकाश राव।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल अभी आपने सुना। कलाकार थे सोहन प्रकाश राव। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 बज चुके हैं, आइए सुने फिल्म संगीत। प्रोग्राम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गाना। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। गीत रचना हसरत की, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाजें लता और रफी की।

0: मैं क्या सदके
1: ओढ़ चुंदरिया निकलूंगी तो दिल जाएंगे किस किस के सीने पे लौट जाएंगे फुल लचक लचक के जरा मटक मटक के लट झटक।

सचिन दा के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी की लिखी रचना सुने। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है अभिमान। जो लोग हमारे साथ देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को 918 किलोहर्ट्ज़ पर, और मैं कमल पारीक आपका अपना रेडियो दोस्त आज आपके साथ हूँ।

भरत व्यास का लिखा गाना हम आपको सुनवाते हैं वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में, मोहम्मद रफ़ी के साथ आवाज, लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई।

जीवन में पिया तेरा साथ रहे। गीत आपने सुना, फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। इस समय मधुर फिल्मी तराने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से 918 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस केंद्र के प्रसारणों का मतलब है आपके मनोरंजन की फुल गारंटी। इसी गारंटी को बरकरार रखते हुए आनंद बख्शी का लिखा गाना हम आपको सुनवाते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब

0: पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोतो, आज गुरुवार है, 25 जून। आज का दिन संगीतकार मदन मोहन को याद करने का दिन। सुरों का बेताज बादशाह, जिसने अनेक फिल्में दी। आंखें अदा मधोश, आशियाना भाई भाई, देख कबीरा रोया, अदालत, संजोग, मनमौजी, अनपढ़, जहां आरा, गजल, शराबी, सुहागन, आपकी परछाइयां, पूजा के फूल, हकीकत, वो कौन थे, एक लंबी फहरिस्त। वीर जारा तक फिल्मों के गीत जिन्होंने अपने संगीत से सजाए। आज का दिन है उनको याद करने का, क्योंकि मदन मोहन जी 25 जून 1924 के दिन पैदा हुए और 14 जुलाई 1975 को हमें अलविदा कह गए। अपने जीवन के आरंभिक दौर में उस शख्स ने 1943 में भारतीय सेना को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में ज्वाइन किया। दूसरे विश्व युद्ध तक वे आर्मी में बने रहे। संगीत में जिनकी रुचि थी, उसके बाद में मुंबई लौट आए और उसके बाद में शुरू होता है मदन मोहन जी का संगीत का सफर। इस दौरान उन्होंने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर प्रोग्राम असिस्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान उनकी मुलाकात उस्ताद फैयाज खान, अली अकबर खान, बेगम अख्तर, तलत महमूद जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ हुई। ४९ का साल, मदन मोहन जी का तबादला हुआ लखनऊ से दिल्ली। सिलसिला आगे बढ़ता गया। अपने फन में माहिर उस्ताद लोगों से उनकी मेल मुलाकात होती गई। कुछ समय उन्होंने फिल्मों में बतौर सहायक संगीत निर्देशक के रूप में काम किया और फिर 1950 का वो दिन आया जब उन्होंने आंखें फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। आज अनुरोध गीत कार्यक्रम में हमारा प्रयास होगा कि हम आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाएं। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करें राजा मेहदी अली खान के लिखे गाने के साथ। लता मंगेशकर ने इसे गाया और फिल्म का नाम है अनपढ़।

प्रोग्राम के पहले गाने की फरमाइश हमारे तक पहुंची पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और इनके परिवार के बहुत से लोगों की। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित, खुशी गोस्वामी और इनके बहुत से साथी। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा ने इसी गीत को सुनना चाहा। ग्राम दुलापुर यूपी मुरादाबाद से भाई मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह भी इसी गीत को सुनना चाहते थे। प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली ने हमें अपनी फरमाइश लिख करके भेजी। कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं ये शिमाली परिवार के। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया ने अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। तेलंगाना निजामाबाद के हमारे श्रोता शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, रहीम मुन्ना, दानिश, आसिफ और शेख परिवार के दूसरे सदस्यगण, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकाश, आकांक्षा, माही मलिक और इनके परिवार के लोग, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा इनके साथ हैं। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश के साथी अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा परिवार के दूसरे लोग और इनके साथ हैं शेख मूसा, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क बनिए. बिल्कुल ठीक बात है RBI की. श्रोताओ, मदन मोहन ने अपने फिल्मी करियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत से करियर में उन्होंने अपने तब्दीलियां भी की. सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि युद्ध में अपना पराक्रम कौशल दिखाने वाले फौजी बंदे को गीत संगीत का भला

और किस तरह से कनेक्शन बैठ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था। मदन मोहन ने अपने साजों से, अपने संगीत से यह साबित किया कि वे न सिर्फ एक अच्छे फौजी थे, अच्छे आर्मी ऑफिसर थे, बल्कि एक अच्छे संगीतकार भी थे और जिन्हें गीत संगीत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। प्रोग्राम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवाते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं के नाम हम पढ़ देते हैं। संगरिया से गोवर्धन दास और कृष्णा देवी, ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सानवी और हर्षता देशमुख। इसके साथ ही हमारे सूरतगढ़ के श्रोता साथी हैं दिनेश शर्मा, मनोज शर्मा, रमेश, प्रवीण और प्रियंका बोधरा। ये फरमाइश हम तक पहुंची है हमारे कुछ साथी दो दो बार फरमाइश कर देते हैं, ऐसा नहीं करें प्लीज। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता कर्ण, शक्ति रिया, जया और दर्शन भाई, आप सबको हम सुनवाते हैं मजरूह का लिखा गाना। जैसा कि आपको पता है, धुन मदन मोहन की बनाई हुई है। दस्तक फिल्म के लिए इस गीत को गाया खुद मदन मोहन ने। आइए इसे सुनें।

गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, किरसन मायल, हनुमान सारण, किड़ू राम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका और खोरवाल परिवार के बाकी लोग, गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना, हर्ष और दीपल, हनुमानगढ़ टाउन से हमारे श्रोता रजाक मोहम्मद, शमी बेगम, इमरान खान और जिशान खान, पीएस नभानकर, निर्मला और विशाल, नरेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से हमें अपनी फरमाइश लिख भेजते हैं।

बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया ने ये गाना सुनना चाहा। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन एमपी से हमारे श्रोता विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन, दीक्षा और कुश मूणत ने अपनी फरमाइश हमें एसएमएस के माध्यम से लिख करके भेजी है। कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षित, अभिषेक और श्रीवास्तव परिवार के सभी लोग कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन, सोनू, निप्पी, तस्नीम और साहनी परिवार के बाकी तमाम हमारे श्रोता साथी, विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश कुमार और सन्नी भावसार ने अपनी फरमाइश हम तक भेजी है। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल, इनके साथ हैं हमारे साथी श्रोता। भोपाल से, क्षमा करें, माफ कीजिएगा, भोपाल से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता लाली श्रीवास्तव और सारा परिवार, आप सभी ने सुनना चाहा कैफी आजमी का लिखा गाना। हिमालय फिल्म्स के बैनर तले लता मंगेशकर ने इसे गाया हीर रांझा फिल्म के लिए।

ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, यूपी से सत्येंद्र कुमार, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंचोलिया, मोहम्मद वकार फरीदी इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन रोजी, बिट्टू साजदा और हिना कौसर ने फरमाइश लिख भेजी बिजनौर से। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और उनके साथ हैं गीता। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। गांव नलोई, तहसील सिवानी, मंडी, जिला हिसार, हरियाणा से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश। प्रोग्राम की अगली फरमाइश गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा की। चक 15 PS से सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह, आदर्श पाल और रोबिन सिंह। गांव कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़ से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह और उनके पंवार परिवार के बाकी लोग। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीरा महिंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा और उनके बहुत से दूसरे साथी। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला। अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम गज़ल।

मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना फिल्म थी गज़ल। प्रोग्राम की अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की नज़र हम करते हैं गांव अरायन से। बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, पूनम और चालिया परिवार के लोग। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण बेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल बेहरा, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश और गुरशब्द सिंह। राहुल ने कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से फरमाइश लिख भेजी है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख, सिद्धार्थ गोडारे, अर्चना प्रणय और हीरामन शेंडे आप हमें फरमाइश लिखकर भेजते हैं। राहुल नगर, अमरावती, महाराष्ट्र से रमन वर्मा, अमन, दिव्यांशु और मदन लाल वर्मा ने बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से अपने पसंद हम तक पहुंचाई है। गांव गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत ने सुनना चाहा राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है वो कौन थी। इसी गाने के लिए कुछ और श्रोता हमारे ख्वाहिशमंद हैं, उनके नाम हम आपको बताएं। गजानंद सारस्वत, ताराचंद, सोनू पवन कुमार, साहिल, राघव उपेश, मुरारी लाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, मदन लाल शर्मा, फुसाराम मिल, महावीर लोहरा और इनके परिवार के लोग। तहसील भादरा अनूप शहर से हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तर्ड, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिलदेव और कांता चौधरी। व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष राष्ट्रीय और गौरव शाही। सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ इनके साथ हैं। कर्णवीर हाउस बुच्चू कैंचियां बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, कर्णवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत और इनके बहुत से साथी। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण यही गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम वो कौन थी।

सनाउद से शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बोड़ाना ये ईमेल हमें भेजी है मॉडल टाउन करनाल के हमारे श्रोता सुधीर नूतन संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति किरण ठाकुर शशि बाला और किरण गुप्ता ने मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरा और नरगिस खातून ने गांव दुलापुर जिला मुरादाबाद यूपी से अपनी फरमाइश हम तक भेजी है। इसके अलावा हमारे बहुत से श्रोता हैं जो हमारी नगमों को पसंद करते हैं, तो उनके नाम हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले राजा मेहदी अली खान का गीत हम आपको सुनवा दें। यूँ नहीं कि मदन मोहन ने सिर्फ दर्द भरे गीतों को संगीत से सजाया, बल्कि बहुत सी रचनाएं उनकी ऐसी भी हैं जो बहुत रोमांटिक हैं, बहुत खुशनुमा हैं। इसी तरह का ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है जब याद किसी की आती है।

बुलढाणा बड़सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई, दीपाली और श्लोक कुमार। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु पार्वती, हिमांशु, श्रवण रेणुवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल और इनके बहुत से साथी। गांव घमंडिया से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमन, तमन्ना, सायना, विष्णु और इवा धारणिया। कुलदीप सिंह, राजविंद्र कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विरख, आप सबने हमें फरमाइश लिख भेजी चक 14 PSB से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से अपनी फरमाइश हम तक भेजते हैं। इसी गाने को सुनना चाह कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय ने। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल कृष्ण और राकेश जैन। बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया नारंग। नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार साई, आप सबने कोली नांदेड़ से अपनी फरमाइश लिख करके भेजी। नई बस्ती गंज डोंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी।

ग्वालियर से मास्टर भंवर लाल कृष्णा, विशाल राजबाला, ममता लक्षिता, नव्या मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकनाराम और उनके बहुत से साथी, अहमदगढ़, मंडी, पंजाब, यहाँ से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, सना, समा, हिना, सकीला, जस्मीन, राजिया सुल्ताना, अख्तर, सूरज और मोहम्मद जावेद अंसारी, बिल्लू सूद, सुनीता चांदनी, आशीष और विश्वजीत ने हमें फरमाइश भेजी मंडी केसरी सिंहपुर से। नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी और उनके बहुत से साथी, अलीका तहसील डब्वाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत और रानी, सोनू, रजनी, हरदेव, मिका, बलविंदर, विरक, जयतेग और इनके दूसरे साथी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमें फरमाइश लिख करके भेजते हैं। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल और उनके बहुत से साथी, ये फरमाइश आई है अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, कुलदीप गांधी, सुनीता राजकुमार और उनके साथ हैं, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा, गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डोली, बेबी पूजा और उनके बहुत से साथी, डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से। प्रोग्राम के आखिर में सुने चिराग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत मजरूह का है।

अनुरोध गीत कार्यक्रम से अब अपने रेडियो दोस्त कमल पारिक को इजाजत दें। आज के प्रोग्राम के लिए गीतों का संकलन था भाई नवीन सिसोदिया का। पेशकश थी आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार दुर्गा राम नायक की तरफ से। आइए दोस्तों कार्यक्रम का पहला गीत सुने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म है शिकारी।

आइए सुने प्रेम पुजारी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत नीरज का है और संगीत दिया है एस टी बर्मन ने।

अभी आपने प्रेम पुजारी फिल्म का गीत सुना, आइए सुनिए मोहम्मद रफ़ी के स्वर में सूरज और चंदा फिल्म का गीत। रचना है आनंद बख्शी की और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आज यशोदा वो अब सुने। आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महबूबा।

श्रोता उस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। फिल्म का नाम है एक बार फिर।

आइए सुनिए। सोनू निगम और जसविंदर नरूला के स्वर में फिल्म सूर्यवंशम का गीत। रचना शमीर की है और धुन तैयार की है अन्नू मलिक ने। आइए सुनिए।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की।

आइए सुनिए जयदेव का संगीत बद के गीत, रचना गुलजार की है। फिल्म का नाम है घरौंदा और स्वर दिया है अरुणा लैला और भूपेंद्र ने। आइए सुनिए।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

आइए अब सुने धनवान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में।

0: आइए श्रोताओं, अब सुने फिल्म एक नजर का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में।
1: शबनम, ये बर्बादी का रास्ता है शबनम।
2: लेकिन बहुत हसीन है अम्मी।
1: डालो भी
2: डालो, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने वालों की जिंदगी मैं ले लूं।
1: क्या कहा?

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ समय बाद 12:05 पर आप सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। 12:30 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत खेत खलिहान। यह कार्यक्रम होगा दिन में 12:50 पर। इसमें जानकारी का विषय रहेगा मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले दिन में 1 बजे से। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे स्वस्थ जीवन जीने के उपाय, पानी की बचत का महत्व, मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में क्या करें।

और पौष्टिकता से भरपूर जुकीनी। इसके साथ साथ आप इस कार्यक्रम में खूबसूरत फिल्मी गीत भी सुनेंगे। दिन में 2 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। फिल्म संकेत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर, दिन में 3 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम उर्दू सर्विस संदेश टू सोल्जर। यह कार्यक्रम होगा शाम के 4 बजे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और संध्या 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इसमें जानकारी के विषय रहेंगे आओ जाने जैसलमेर को, भारत की मुख्य नदियां, जीवन में विचारों का महत्व, सभ्यता स्थल कालीबंगा और आज के इतिहास पर भी चर्चा की जाएगी। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे सैरायकी, हिंदी में प्रादेशिक समाचार। शाम के 6:30 पर 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे ओल्ड ट्रैफ्ट क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। शाम 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या रात्रि 9 बजे News 8:09 हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे ओल्ड ट्रैफ्ट क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

कार्यक्रम कुछ बातें, कुछ गीत सुनने वाले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार दुर्गाराम नायक की तरफ से। दोस्तों,

जिंदगी में प्रेम, प्यार, मोहब्बत और अपनेपन के एहसास को हम सभी पाना चाहते हैं, इस एहसास में खोना चाहते हैं। और दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे मित्र, विश्वास, एहसास और रूह से जुड़े होते हैं। जीवन के सफ़र में मिलन के साथ साथ जुदाई भी चलती रहती है।

एहसास और रूह से जुड़े होते हैं। जीवन के सफर में मिलन के साथ साथ जुदाई भी चलती रहती है और जिंदगी में यादों का रिश्ता, जुदाई का एहसास इसको और गहरा व भावनात्मक बनाता है। दोस्तों, जुदाई यादों का वो अनमोल खजाना होता है जिसको ना कोई छीन सकता है और ना कोई चुरा सकता है। वह हमारे मन के सुरक्षा घेरे में कैद और महफूज रहता है। दोस्तों, अपनों की जुदाई के बाद हमारे पास सिर्फ मीठी यादें रह जाती हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। वो यादें जुदाई के खालीपन को भरती हैं और फिर तन्हाई में हमारा मन यही कहता है,

जिंदगी के अंधेरे को दूर करके जीने की आस पैदा करती है। प्यार को कभी भी हदों और सरहदों में कैद भी तो नहीं किया जा सकता ना।

दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जिनी ने कहा था कि मोहब्बत रूह की खुराक है, यह वह अमृत बूंद है जो मरे हुए भावों को जिंदा करती है। यह जिंदगी की सबसे पाक, सबसे ऊंची, सबसे मुबारक बरकत है। प्यार वो एहसास है जो जज्बा है, सागरों से, पर्वतों से, पहाड़ों से ऊंचा और बड़ा है। ये प्रेम, प्यार, मोहब्बत दोस्तों एक प्रेरणा है, और प्यार तो उस रोशनी की तरह है जो

दोस्तों, ये प्यार, ये मोहब्बत एक उम्मीद है, एक आस है, एक कसक है, सुख दुख है, इंतजार है, बेकरारी है, आंसू, खामोशी, वादे, इरादे, सपने और भी पता नहीं क्या क्या है ये प्यार। दोस्तों, मोहब्बत अमूल्य चीज है और सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार कुर्बानी मांगता है। और ये प्यार कभी भी सोच की नहीं होता। जहां सोच पैदा हो गई, वहां नफा नुकसान पैदा हो गया। जहां लालच और घाटे की जो सोच है वो हो गई, वहां समझो व्यापार पैदा हो गया। वैसे भी ये प्यार मोहब्बत कोई खरीदने या बेचने की चीज नहीं है। ये तो वो जज्बा है जिसे शब्दों या अल्फाजों में बयां नहीं किया जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता।

दोबारा जीने के लिए पल पल तरसते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले कल को, आने वाले पल को भी हम सुनहरा बना सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है एक दूसरे में आस्था की, विश्वास की और उत्साह बनाए रखने की।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत समाप्त करने की अपने दोस्त दुर्गाराम नायक को आज्ञा दें। नमस्कार, हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 होने वाले हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं चंदन दास।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में चंदन दास को। एक छोटे से अंतराल के बाद चंदन दास के स्वर में और गजलें।
1: जून इज मंथ फॉर नेशनल इनफर्टिलिटी अवेयरनेस। लेट्स लिसन फ्रॉम इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट।
2: हाय, आई एम डॉक्टर कंगन, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी फ्रॉम एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्री गंगानगर। टुडे वी विल टॉक अबाउट फर्टिलिटी। एवरी कपल ड्रीम्स ऑफ हैविंग अ फैमिली and for many, infertility creates a silent delay. Clinically, infertility means not achieving pregnancy after 1 year of trying. It affects 1 in 6 couple. Remember, it's never just a woman's issue. Both partners are equal here. From lifestyle changes to advanced medical therapies like IVF, infertility treatments are available. It's time to break the stigma and start the conversation and seek timely medical advice. Let us come together to be a voice for complete families. Thank you.
1: Issued in public interest by Zenova, a division of Gufic Biosciences.
0: आइए श्रोताओं, अब सुने चंदन दास के स्वर में अगली गजल।

0: श्रोता वो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं चंदन दास। एक छोटे से अंतराल के बाद चंदन दास की स्वर में कुछ और गजलें।
1: जून इज मंथ फॉर नेशनल इनफर्टिलिटी अवेयरनेस। लेट्स लिसन फ्रॉम इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट।
2: Hello, I am Dr. Sumit Sidhu, Consultant Fertility Specialist from Vasundhara IVF Essence Super Speciality Hospital, Sri Ganganagar. A voice for fertility, a voice for complete families. Every couple dreams of having a family. For many, infertility creates a silent delay. Clinically, infertility means not achieving pregnancy after a year of trying, affecting 1 in 6 couples. Remember, it's never just a woman's issue. Both partners are equal here. From lifestyle changes to advanced medical therapies like IVF, infertility treatments are available. It's time to break the stigma, start the conversation, and seek timely medical advice. Let us come together to be a voice for complete families.
1: Issued in public interest by Zenova, a division of Gufic Biosciences.
0: आइए श्रोताओ, कार्यक्रम सुगम संगीत के आखिर में सुने चंदन दास के स्वर में यह गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में चंदन दास को। हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:50 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान में जानकारी। मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों अपा खेती पाती के साग साग दूसरा सहायक धंधा भी करा, जहाँ पशुपालन है, मछली पालन है या फिर मुर्गा पालन है, तो इस का अपनी अतिरिक्त जी की आय है, मुनाफो जो है वो अपने टेम बे टेम मिलते रहे। तो आज आप बात करांगा मछली पालन के बारे में, क्योंकि मछली पालन एक लाभदायक व्यवसाय है किसान भाइयों। और बढ़िया मछली पालन करने खातर उचित ढंग से तालाब बनाना जरूरी है और जगह होनी भी जरूरी है, क्योंकि ई व्यवसाय के माँ अपा कम पैसा लगा के भी अच्छा लाभ ले सका। लेकिन ई व्यवसाय में सबसे पहले अपन ने मछली पालन खातर तकनीकी जी की जानकारी है, बिगी जी की बारीकियां हैं, बांगो ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि कई बार किसान भाई लोग है बिना जानकारी ही मछली पालन को जो बीड़ो है उठा लिया और मछली पालन करना शुरू कर दिया, तो बीच का अपन है नुकसान भी हो सके। तो इस पे अपन है जिसकी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण जो को है वो होना जरूरी है और अच्छी जानकारी होनी जरूरी है, ताकि अपन है बढ़िया लाभ मिल सके। और अपने ही क्षेत्र का मां बहुत सी किस्म की जो मछलियां हैं बे अपने जगह भाई लोग है बे पालन करे ही है। जहाँ बात करें आप देसी किस्म में कतला है, रोहू है, मृगिल है, और विदेशी जो की मछलियां हैं बंगवा जिया सिल्वर क्रॉप है, ग्रास क्रॉप है, कॉमन क्रॉप है, आंगो जो को बीज जो को है बोले आगे अपन तालाब में नाक देवा, तो बीज फिर बाद में धीरे धीरे अपन जिया जिया खुराक देवांगा, आहार देवांगा, बिया बिया मछलियां जो को आकार है वो बड़ो होते जाओगे और बाद में फिर मुनाफा भी अपन ज्यादा होगा। बात करना किसान भाइयों आप तालाब निर्माण के बारे में, तो नयो तालाब निर्माण खातर अपन उचित जगह ढूंढनी पड़ेगी जठा आप तालाब बनाना है। और ज़्यादा जानकारी अपना जगह नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर कोई कृषि विशेषज्ञ है या फिर कोई जाने जान किसान है जगह मछली पालन कर रखे है,

0: किसान भाइयों, रासायनिक जो कि अकार्बनिक खाद है बा एक हेक्टर क्षेत्र का माँ हर साल लगभग अपन जी बात करें तो यूरिया है बा 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर हर साल अपन देनी पड़े। अमोनिया सल्फेट 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर और सिंगल सुपर फास्फेट 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर हर साल अपन है देनी है। उर्वरक देना की जो कि विधि है बिग माथा ने बता देवा कि जैविक खाद है वह कुल लगभग 10 बराबर हिस्सा में बांट के अपन है हर महीने के हिसाब से तालाब में नाखनी है। लेकिन ये बात को ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी आप दोनों खाद दें तो बंग 15 दिन को जो अंतराल है वो होना जरूरी है। रासायनिक खाद की निर्धारित मात्रा ने पानी में घोल के और बिंगो तालाब के माँ बढ़िया तरीके से छिड़काव करना है। और गोबर गीज की मात्रा है वह तालाब में 5 से 10 जगह पर किनारा पर पानी के अंदर अपन ने रख देनी चाहिए। और इनके अलावा जो को परिपूरक आहार है क्योंकि मछली की जल्दी बढ़ोतरी खातर और ज़्यादा उत्पादन लेना खातर अपना प्राकृतिक आहार गसागा सागा परिपूरक जो को आहार है वो भी देना जरूरी है। किसान भाइयों, परिपूरक आहार के रूप में अपना सरसों है, मूंगफली की जो खड़ है, चावल को जो को छिलको है बराबर मात्रा में मिला के और तालाब का मापा ने नाखनो है। परिपूरक आहार के बारे में थाने बता देवा अगर सरसों या फिर मूंगफली की जो खड़ है 40% और चावल की कड़ी जकी है 40% और सोयाबीन को आटो 15% और सूखी मछली को जो को चूरू है वो 4% और एगरी मीन है वो 1 सैकड़ा आपने मिला के जो को परिपूरक आहार है वो तैयार करके और मछलियाँ ने देना है सा। अब बात करें जी आप मछली पालन करा तो मछलियाँ में कई तरह जो रोग है, व्याधियाँ है, बेबिया है तो बांगो भी आपने पूरा ध्यान रखना है, पूरा आहार देगे और फिर आप मछलियाँ ने जो कि बीमारियाँ है बांसू बचाना जरूरी है सा। और टाइम टाइम पर अपना जगह कृषि विज्ञान केंद्र है, वैज्ञानिक जगह लोग अभी बताते रहे हुआ कि अगर जब भी अपन यहाँ लगा कि मछलियाँ अंदर बीमारी आ गई तो अपा बिंगो तुरता फुर्त जो को नियंत्रण है वो करना जरूरी है सा। और इनका लक्षण की बात करें जहाँ मछली को जो को रंग है वो पीड़ो और बदरंग होने लग जाए कई बार तो अपने समझाना चाहिए कि मछली अंदर कोई ना कोई बीमारी जिकी है वो आ गई। और कई बार देखा का शरीर पर रोगग्रस्त सूजन है या फिर धब्बा दिखाई देने लग जाए, कई बार पेट फूलड़ा दिखाई देने लग जाए तो इससे लक्षण से मछली की जो शारीरिक बढ़ोतरी आबार हो जाए और मछलियाँ जो कि अभी मरनों भी शुरू हो जाए। तो इन नियंत्रण के लिए अपन ने लार्वा बक्षी मछलियाँ बेबी अपन छोड़ सका जो कि दूसरा परजीवी है अपन खा गए और बीमारियाँ जो कि अभी कम कर दे। अगर यहाँ लगा कि पूरा तालाब के अंदर ही बीमारी पूरी फैल रही है तो अपन ने 3% नमक को घोल या फिर 1% पोटेशियम परमैंगनेट घोल बना के और तालाब में नाखनो चाहिए। तो आप पूरी बातों को ध्यान रख के अपा मछली पालन वो बढ़िया तरीके से बेहतर तरीके से कर सका। और फिर भी अगर कोई ज़्यादा जानकारी की जरूरत हो तो आप नज़दीकी विज्ञान केंद्र है बांसु आप संपर्क कर सकें सा। बड़ा मैं चालू सा, राम राम सा, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान में जानकारी, मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है। अब हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने देश के लोकतंत्र और संविधान के आदर्शों को कायम रखने वाले नागरिकों के असाधारण साहस की सराहना की। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि आपातकाल एक कठिन दौर था जब देश के संवैधानिक मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने देश की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का आह्वान किया। आपातकाल की बरसी पर आज जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आयोजन में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर के शिक्षा संकुल में ये परिणाम जारी किया। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित

0: माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के लिए एआई आधारित समाधानों पर चर्चा करना है। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार कार्यशाला से प्राप्त सुझाव ग्रामीण विकास में एआई के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में सहायक होंगे। राज्य पुलिस ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मोटर यान अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाया है। महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर 4 से 23 जून तक चले इस अभियान में रिकॉर्ड 158,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. बी. एल. मीणा ने बताया कि इस दौरान नियमों के विरुद्ध ब्लैक फिल्म, अवैध हुटर, अनधिकृत लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और गलत नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों के चालान काटे गए। जिलावार कार्रवाई में जालौर जिला पूरे प्रदेश में पहले और अजमेर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जयपुर कमिश्नरेट में 807 कार्रवाई की गई। पुलिस ने आमजन से सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। राज्य पुलिस ने साइबर ठगों के नए तरीके को लेकर एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी अब फर्जी बॉस या आरबीआई जैसी नियामक संस्था बनकर कर्मचारियों, विशेषकर वित्त विभाग के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर ठग ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर तत्काल भुगतान का दबाव बनाते हैं। वे कोई लिंक या जिप फाइल भेजकर सिस्टम हैक कर लेते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि बिना पुष्टि किए कोई वित्तीय लेन देन ना करें और अनजान लिंक या फाइल बिल्कुल ना खोलें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराएं। अजमेर के ब्यावर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से नशा मुक्ति के लिए ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा शुरू किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन और महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नो ड्रग्स जोन बनाना है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थाओं के 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह नशा मुक्त क्षेत्र बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यावर के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों में शिकायत पेटी भी स्थापित की गई है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियों में और तेजी आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी भाग में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बरसात 12 जिले के अटरू में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत। पेशकश है सविता कुमारी की।

मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल दूर है पर रास्ता बदला नहीं हूँ मैं। हौसलों की उड़ान से जीत लेंगे ये जहाँ, अभी तो बस हौसलों के साथ निकला हूँ मैं, अभी तो बस हौसलों के साथ निकला हूँ मैं। कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को सविता कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। पहला सुख निरोगी काया। बहनों, ये बात हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं और सही भी है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा, पर बिना स्वस्थ रहे हम कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारे पास सब तरह का ऐशो आराम है, सुख सुविधा है, धन दौलत है, पर हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो ये सब हमारे लिए फिजूल हैं।

हमें सभी तरह से खुश रहना है तो स्वस्थ रहना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहनों, स्वस्थ जीवन से हमारी आयु भी बढ़ती है, उम्र एक जगह पर रुक सी जाती है, बुढ़ापे के निशान जल्दी नहीं आते, और सबसे अहम बात, हमारा मन हमेशा प्रसन्न और जवान रहता है। आजकल स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए लोग कई तरह के साधन भी अपनाते हैं, जबकि स्वस्थ रहना हमारी अपनी जीवन शैली पर निर्भर करता है। अगर हमारी जीवन शैली स्वस्थ है, संयमित है, तो हमारा स्वास्थ्य लाजमी ही स्वस्थ होगा। बहनों, कई बार ऐसा लगता है कि स्वस्थ रहना हमारे हाथ में नहीं है, इस बात पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य और खुशी पर हमारी जीवन शैली के विकल्पों का बहुत प्रभाव रहता है। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का तरीका पता होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे दैनिक अनुभव का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। हम अपनी तरह से स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं, इन सुझावों पर चर्चा करने से पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शैली के विकल्पों का बहुत प्रभाव रहता है। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का तरीका पता होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे दैनिक अनुभव का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। हम अपनी तरह से स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं, इन सुझावों पर चर्चा करने से पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, स्वस्थ रहना कोई मुश्किल भरा काम नहीं है। यह बस एक व्यवस्थित तरीका है जिसे अपनाकर हम जीवन भर प्रसन्न रह सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना खान पान और आहार व्यवस्थित करना चाहिए। हमें अपने आहार में ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज और मेवे शामिल करने चाहिए। हम आज की व्यस्त जीवन शैली में तुरंत मिलने वाले भोजन जैसे कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इनके आदि हो चुके हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। इसकी बजाय हमें स्वयं ही पौष्टिक आहार अपनाना होगा, साथ ही सक्रिय दिनचर्या भी अपनानी होगी। नियमित रूप से हल्के व्यायाम, कसरत और योग करना होगा। अगर हम इसके लिए समय नहीं निकाल पाते तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी दूरी तक जाना है तो पैदल चलकर जाएं या साइकिल चलाकर जाएं। बस ऐसे ही हम कसरत कर सकते हैं जो हमें स्वस्थ रखती है। बहनों, इसके अलावा हमें पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए। हमें सुकून भरी 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य ही लेनी चाहिए। यह हमारे मस्तिष्क को आराम देती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तब हमारा शरीर भी दुगुना ऊर्जावान होता है और इसके बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। बहनों, अच्छा आहार, पर्याप्त नींद के साथ हमें हमारे शरीर को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी हमें ऊर्जा देता है। बिना पानी के हमारा शरीर निष्प्राण सा हो जाता है। इसलिए समय समय पर पानी पीते रहें और ऊर्जा प्राप्त करते रहना चाहिए। बहनों, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है तनाव, जो हमें हर तरह से अस्वस्थ कर देती है। इसका प्रबंधन करना भी बेहद ज़रूरी है। तनाव से बचने के लिए हमें नियमित रूप से ध्यान और योग करना चाहिए। योग केवल शरीर को ही स्वस्थ नहीं देता बल्कि यह मन को भी एकाग्र करता है। आज की व्यस्त दिनचर्या में हमें काम का तनाव, परिवार का तनाव, पढ़ाई का तनाव और ना जाने कितने प्रकार के तनाव झेलने पड़ते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो इनसे बचने के लिए हमें हमारी पसंदीदा हॉबी अपनानी चाहिए। जो हमें पसंद हो वह कार्य करना चाहिए। परिवार में या मित्र समूह में कोई ऐसा हो जिसे हम अपने मन की व्यथा कह सकें तो उससे कह देनी चाहिए। इससे भी तनाव कम होता है। और इसके साथ ही आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा, नशे से दूर रहना चाहिए। स्वस्थ जीवन जीने का मंत्र है कि किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। बस इन्हीं बातों को अपनाकर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आइए

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा।
3: बहनों, प्रकृति ने हमें बहुत से उपहार दिए हैं जिनसे हमारा जीवन सुगम तरीके से चल रहा है। ये पेड़ पौधे, वनस्पति

ती पहाड़, नदियाँ, झीलें ये सब प्रकृति का दिया अनुपम उपहार हैं, जिनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। प्रकृति की दी गई प्राणवायु, भोजन, जल ये सभी हमें जीवित रखते हैं। बाकी कृत्रिम उपहार तो सिर्फ हमें भौतिक आनंद देते हैं, पर प्रकृति के ये उपहार हमें अनमोल जीवन देते हैं। इन्हीं अनमोल उपहारों में से एक है जल। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल के बिना हमारा दैनिक जीवन रुक जाएगा, हम प्यासे मर जाएंगे और ये प्रकृति समाप्त हो जाएगी। जल से ही पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करते हैं और उन पेड़ पौधों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं और बस ये चक्र यूं ही चलता रहता है। बहनों, इतना सब पता होने के बावजूद हम जल की बर्बादी कर देते हैं। हम रोज़ समाचारों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से ये जानते हैं कि पृथ्वी पर स्वच्छ पीने लायक पानी बस कुछ मात्रा में ही है। इसे हमें उपयोगी कार्य में लगाना है और व्यर्थ नहीं बहाना, पर हम हमेशा इन बातों की अनदेखी करते हैं। ये बातें हमें तब समझ आएंगी जब हमें ये उपहार मिलने बंद हो जाएंगे। कभी कभी मौसम के बदलाव के साथ हमें पानी सीमित मात्रा में मिलता है तो हम उसे उतनी ही मात्रा में खर्च करते हैं, पर फिर सही मात्रा मिलने पर उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। बहनों, हमें पानी के महत्व को समझना होगा। पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना पानी के हमारा जीवन तो समाप्त होगा ही, साथ ही प्रकृति के साथ साथ पर्यावरण का नाश भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका उपयोग कर पाएँ और पृथ्वी पर ये जीवन सुचारू चलता रहे। चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं पहले ये प्यारा सा गीत।

मैनो, गीत से पहले हम बात कर रहे थे पानी की बचत के महत्व के बारे में। हम अक्सर देखते हैं कि घरों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी का बहाव किया जाता है, जिसे रोकना बेहद ज़रूरी है। साफ़ सफाई में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा पानी बह जाता है, जिसका प्रबंधन हमें करना आना चाहिए, क्योंकि पानी ही जीवन का आधार है। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है, इसलिए पानी बचाकर हम पीने का स्वच्छ पानी सभी के लिए बचा सकते हैं। बहनों, दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल खेती और फसलों को उगाने में होता है। अगर पानी बर्बाद होता रहा तो भविष्य में सिंचाई के लिए पानी नहीं बचेगा, जिससे गंभीर खाद्य संकट और भुखमरी पैदा हो सकती है। इसलिए पानी बचाना बेहद ज़रूरी है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी जल बचाना आवश्यक है। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और वनों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जल संरक्षण से नदियाँ, झीलें और आर्द्रभूमि सुरक्षित रहते हैं, जिससे जैव विविधता बनी रहती है और प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है। इसलिए हमारा जल बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जल तो बहुत है, पर उपयोग लायक केवल 3% ही है। बाकी 97% तो समुद्री खारा पानी है, और इन 3% में से भी कुछ ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। तो इस उपलब्ध जल को बचाकर भावी पीढ़ी के लिए भी जल बचाना हमारा कर्तव्य है। पानी की बचत से बिजली की बचत भी होती है। हमारे घर तक जल पहुंचने तक बिजली का बड़ा योगदान है। मोटरों के माध्यम से पानी हमारे घरों में आता है। अगर हम सीमित जल उपयोग करेंगे तो बिजली की खपत कम होगी, इससे जल भी बचेगा और बिजली भी बचेगी। बस हम घर पर कुछ सावधानियां बरतकर जल बचा सकते हैं। हमें याद रखना है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हमारी आज की छोटी सी बचत भविष्य में बड़ा योगदान

योगदान दे सकती है। इसलिए जल बचाएं, जीवन बचाएं और पृथ्वी को भी बचाएं। बस इसी संकल्प के साथ जल की बचत करते रहें और सुनते हैं इसी के साथ ये प्यारा सा गीत।

रोजाना हमारे भोजन में शामिल फल सब्जियां हमें ऊर्जा, पोषण और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इन पोषक फल सब्जियों में से एक है जुकीनी। यह एक पौष्टिक सब्जी है जिसे हरी तोरी या विदेशी तोरी भी कहा जाता है। जुकीनी में विटामिन ए, विटामिन सी और B6 भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इम्यूनिटी यानी कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। साथ ही जुकीनी ब्लड शुगर को नियंत्रित भी करती है। बहनों, जुकीनी में 95% तक पानी मौजूद होता है और फाइबर से भरपूर होने के कारण यह वजन को नियंत्रित भी रखती है। इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। साथ ही जुकीनी में ल्यूटिन और जैक्सेंथिन ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे त्वचा में चमक आती है। जुकीनी को सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में या ग्रिल करके भी खाया जा सकता है। तो पोषण के साथ साथ स्वास्थ्य प्रदान करने वाली जुकीनी को हम अपने आहार में शामिल करके पोषक तत्वों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इसी के साथ एक और प्यारा सा गीत।

0: June is month for National Infertility Awareness. Let's listen from infertility expert.
1: Hello, I am Dr. Sumit Sidhu, Consultant Fertility Specialist from Vasundhara IVF Essence Super Speciality Hospital, Sri Ganganagar. A voice for fertility, a voice for complete families. Every couple dreams of having a family. For many, infertility creates a silent delay. Clinically, infertility means not achieving pregnancy after a year of trying, affecting 1 in 6 couples. Remember, it's never just a woman's issue. Both partners are equal here. From lifestyle changes to advanced medical therapies like IVF, infertility treatments are available. It's time to break the stigma, start the conversation, and seek timely medical advice. Let us come together to be a voice for complete families.
0: Issued in public interest by Zenova, a division of Gufic Biosciences.
2: बहनों, समय कब कैसी करवट ले ले पता ही नहीं चलता। विपत्ति किसी भी रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो सकती है। धनाभाव हो, कोई बीमारी हो, दुर्घटना हो या कुछ और, ऐसी स्थिति में लोग अक्सर घबरा जाते हैं, जबकि ऐसे समय में धैर्य और मजबूती दोनों बेहद ज़रूरी हैं। धैर्य होने पर कोई फैसला लेना आसान हो जाता है, इसी धैर्य और समझदारी के अंतर्गत आता है मेडिकल इमरजेंसी। बहनों, मेडिकल इमरजेंसी का सामना हमें कहीं भी कभी भी करना पड़ सकता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है कि कुछ भी सोचते नहीं बनता। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हैं तो हमें लगता है कि काश हम कुछ कर पाते। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति तब बनती है जब किसी को रुक रुक कर या बहुत मुश्किल से सांस आ रही हो, सीने में दर्द या भारीपन 2 मिनट से ज़्यादा का हो, दुर्घटनावश बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो या फिर अचानक बेहोशी की स्थिति हो जाए। ये कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती हैं जिसे निपटना हमें आना चाहिए। इसकी ज़रूरत हमारे परिवार, पड़ोस या किसी अनजान

वो भी पड़ सकती है। बहनों, मेडिकल इमरजेंसी के समय घबराएं नहीं, तुरंत एम्बुलेंस या नज़दीकी हॉस्पिटल को कॉल करें। यदि मरीज़ की सांस या दिल की धड़कन रुक गई है तो प्रशिक्षित होने पर CPR दें। अगर भारी रक्तस्राव हो रहा है तो साफ़ कपड़े से दबाव डालकर घाव को बंद करें और मरीज़ को सुरक्षित तरीके से लिटा दें। बहनों, सबसे ज़रूरी, मरीज को शांत रखें। घबराने से ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन बढ़ती है, इसलिए मरीज़ को हिम्मत दें और आराम से बिठाएं और सही जगह पर लिटा दें। ऐसे समय में हौसला बहुत काम करता है। हमारा धैर्य, हौसला और समझदारी किसी का जीवन बचा सकती है, इसलिए इस परिस्थिति हेतु तैयार रहें और सभी की मदद करें। तो आइए सुनते हैं इसी के साथ एक और प्यारा सा गीत।

0: The first multi-day test match against Sri Lanka at the Galle International Stadium in Sri Lanka when reports last came in. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Bangladesh in the Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. Harmanpreet Kaur-led women in blue are currently placed second in Group A, having won 2 out of 3 matches. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in the afternoon session today. The Sensex climbed 575 points to 77,566, while the Nifty jumped 173 points to 24,195 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Samvidhan Hatya Divas being observed today. Prime Minister Narendra Modi pays homage to those who defended democratic values during the emergency. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for stronger collaboration amid global challenges, invokes Vasudhaiva Kutumbakam at Jeju Forum in South Korea. BRICS Energy Ministers meeting begins in Gurugram under India's BRICS 2026 chairship. Powerful earthquakes strike Venezuela back-to-back, causing multiple building collapses. State of emergency declared. South Africa advanced to knockout stage of FIFA World Cup for first time, defeating South Korea 1-0 in Monterrey. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
2: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, 1 बरस गया, 1 बरस।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला

0: अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
4: The global south should be enabled.
5: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा

0: फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20

0: क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दुर्गा राम नायक की तरफ से दोस्तों, आज संगीतकार मदन मोहन की जयंती है। उन्हीं के संगीतबद्ध की गीत आइए सुने। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अनपढ़। गीत लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और धुन तैयार की है मदन मोहन ने।

आइए श्रोताओ, अब सुने मदन मोहन का संगीत पद का गीत, जिसे लिखा है कैफी आजमी ने, स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है हंसते जख्म।

Are you sure that we're Bthuni? कैफी आजमी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है हकीकत और आवाज लता मंगेशकर की, जिसे संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। आइए सुनिए।

श्रोता, उस समय आप सुन रहे हैं संगीतकार मदन मोहन की जयंती पर उन्हें के संगीतबद्ध किए गीत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने। आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है अनपढ़।

आइए श्रोता वो अब सुने वो कौन थी फिल्म का गीत। आवाज लता मंगेशकर की है जिसे संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। रचना है राजा मेहदी अली खान की। आइए सुनिए।

आइए श्रोताओ, कार्यक्रम फिल्म संगीत के आखिर में सुने मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म हीर रांझा का गीत, जिसे लिखा है कैफी आजमी ने और धुन तैयार की है मदन मोहन ने।

श्रोताओ, आज की फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपने मदन मोहन की जयंती पर उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीत सुने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त करने की दुर्गाराम नायक को आज्ञा दें। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: रजिया अहमद से खबरें सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अख्तियार का दिफा किया था। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत बैन अल-अक़वामी इश्तराक पर जोर दिया है। भारत और चीन के दरमियान 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते सरहदी तजारत फिर शुरू होगी। 26 तजारती पासिस जारी किए गए हैं। ब्रिक्स 2026 की भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग गुरुग्राम में शुरू हो गई है। वेनेजुएला में ये के बाद दिगरे आए दो जजरों में बहुत से मकानात मुनहदिम हो गए हैं। हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। और फीफा आलमी कप में मॉन्टेरे में जनूबी अफ्रीका जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा कर पहली मरतबा नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। खबरें तफसील से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खल्फशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आइन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था क्योंकि उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत पर सवाल उठ रहे थे। इसके नतीजे में आमला ने मुकम्मल इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे और सरकारी अथॉरिटी पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इसके बाद मुख्तलिफ आईनी तहफ़ुज़ात मुअत्तल कर दिए गए थे। शहरियों को उनके हकूक के खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चारा जोई के करने के हकूक से महरूम कर दिया गया था। यहाँ तक के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था जो प्रेस की आज़ादी की तहफ़ुज का एक कानूनी अदारा है। इस मुद्दत के दौरान आईनी तरमीम के जरिए इमरजेंसी का ऐलान करने के सदर जमहूरिया के फैसले पर सवाल करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी और वज़ीर आज़म और लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब को अदालती जाँच पड़ताल से मुस्तस्ना कर दिया गया था। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखला अमित शाह ने आज उन सभी को खराज अकीदत पेश किया है जो इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अख्तियार के दिफा में साबित कदम रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इमरजेंसी के मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा है कि इमरजेंसी आइन पर एक बराह रास्त हमला था। उन्होंने कहा कि इस अरसे में सिविल आज़ादियों को मुअत्तल कर दिया गया था। इजहार आज़ादी किया

व्यक्तियों की उमंगों, हकों और फराइज को बयान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क इंसाफ, आजादी, बराबरी और भाईचारे के उसूलों के तहफ्फुज़ की खातिर मुसलसल अहदबस्ता है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने का मकसद इस स्याह बाप के मुल्क की याद को जिंदा रखना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि कांग्रेस पार्टी मुस्तकबिल में कभी भी जमहूरियत और आईन पर ऐसा हमला न कर पाए। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया इस वक्त हथियारों के बढ़ते हुए इस्तेमाल, ज्यादा खतरात मोल लेने के रुझान और सोशल मीडिया के दौर से हम आहंग सियासत का मुशाहदा कर रही है। जनूबी कोरिया में अमन और खुशहाली 2026 के जेजू फोरम से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मुख्तलिफ नौयत की तफरीक का रुझान पहले से ज्यादा बढ़ गया है और ममालिक अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल में भी पसोपेश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी तरक्की खुद भी ऐसे रुझान को फरोग दे रही है। वज़ीर मसूफ ने कहा कि कोविड-19 जैसे चैलेंजों, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों या आब हवा की शदीद सूरतहाल के असरात से निपटने के लिए बेलकवामी इश्तराक की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से दर्ज की जा रही हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख के दर्रे के रास्ते 26 भारतीय ताजरों का पहला दस्ता कल चीनी इलाके तिब्बत में दाखिल हो सकता है, जो कि 6 साल के वक्फे के बाद सरहदी तजारत की बहाली का मौका होगा। तजारती अफसर और धारचूला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा है कि 26 तजारती पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 ताजर और 9 मुआविन शामिल हैं। इंतजामिया को 103 से ज्यादा ताजरों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं और जल्द ही 25 ताजरों के दूसरे दस्ते के लिए तजारती पास जारी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। ब्रिक्स 2026 की भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग गुरुग्राम में शुरू हो गई है। बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इक़्तिसादी, समाजी और इंसानी तरक्की के लिए तवानाई बेहद अहम है। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब खट्टर ने कहा कि पायदार तरक्याती मकासद के हुसूल के लिए काबिल इस्तेआत, काबिल भरोसा और पायदार तवानाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत काबिल तजदीद तवानाई की अपनी सलाहियतों, स्मार्ट ग्रिड, बुनियादी ढांचे और तवानाई के स्टोरेज के निजाम को तेजी से वसत दे रहा है ताकि मुस्तकबिल की जरूरतों के लिए बिजली के शोबे को तैयार रखा जा सके। ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग कल तक जारी रहेगी। मीटिंग में तवानाई की यकीनी फराहमी, तवानाई तक रसाई और जिद्दत राजी जैसे शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। वेनेजुएला के सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने मुल्क में एक बाद दिगरे एक 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले आने के बाद मुल्क में हंगामी सूरतहाल का ऐलान कर दिया है। आज सुबह इन जलजले के सबब कारकास और मुस्तसिल इलाकों में कई इमारतें ढह गईं। मुल्क से खिताब करते हुए मोहतरमा रोड्रिग्स ने ऐलान किया कि तलबा के लिए क्लासें मुअत्तल की जाती हैं और आइंदा नोटिस तक गैर जरूरी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। उन्होंने सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में सरकारी और निजी सेहत निजाम को भी सरगर्म रहने को कहा है। इस दौरान ताकतवर झटकों के बाद जहां बड़े ढांचे मुनहदिम हो गए हैं, उन मुख्तलिफ मकामात पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। एटमी तवानाई एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ ईरान के इब्तदाई अमन मुआहदे के तहत ईरान में मुआयने की कार्रवाई अंजाम देगा। जापान में नामानिगारों से बातचीत करते हुए IAEA के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि वो बहुत जल्द ईरान में मुआयने के सिलसिले में तारीखें, तरीक़ाकार, मकामात और दीगर उमूर पर काम करेंगे। फीफा आलमी कप में ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, मेक्सिको और मराकश आज अपने अपने मुतालका मैच जीत

0: कर नॉकआउट मरहले में पहुंच गए हैं। जनूबी अफ्रीका आज सुबह मॉन्टेरे में जनूबी कोरिया से एक गोल से जीत हासिल करने के बाद पहली मर्तबा नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अकदार का दिफा किया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत बलकमामी इश्तराक पर जोर दिया है। भारत और चीन के दरमियान 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख के दर्रे के रास्ते सरहदी तजारत फिर शुरू होगी। 26 तजारती पासेस जारी किए गए हैं। ब्रिक्स 2026 की भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग गुरुग्राम में शुरू हो गई है। वेनेजुएला में ये के बाद दिगरे आए दो जजरों में बहुत से मकानात मुनहदिम हो गए हैं। हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। और फीफा आलमी कप में मॉन्टेरे में जनूबी अफ्रीका जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा कर पहली मर्तबा नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी 1000 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हुसैन अदर और हमनवा नौहा खानी कर रहे हैं।

नत से खबर से

0: बला तूने मुझे लूट लिया है, ए करबो बला तूने मुझे लूट लिया है। उजड़ा हुआ बेशीर का गहवरा पड़ा है, उजड़ा हुआ बेशीर का गहवरा पड़ा है। असगर के लिए माँ का गरेबान फटा है।
1: डॉक्टर रतिया अभी नवाखानी कर रही थी। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत प्रोग्राम अंदाज़ नज़र। आज के अंदाज़ नज़र प्रोग्राम का मौजू है मुहर्रम का पैगाम इंसानियत के नाम।
2: सामीन, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। प्रोग्राम अंदाज़ नज़र के तहत आज मुहर्रम का पैगाम इंसानियत के नाम के मौजू पर हम बातचीत करेंगे, और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौलाना मोहम्मद एजाज साहब, सदर ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक, और मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत तशरीफ़ फरमा है। आप दोनों हजरात का हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है।
3: शुक्रिया।
2: और साथ ही हम अपने सामेईन के लिए जानना चाहेंगे कि मुहर्रम क्या क्या पैगाम है। सबसे पहले मौलाना मोहम्मद एजाज साहब अपने तासुरात बयान करें।
3: देखिए, 10 मुहर्रम उल हराम को मैदान करबला में रूनुमा होने वाला लर्जाखेज वाकया सिर्फ जालिमों के खिलाफ मजलूमों के लिए जंग नहीं है, या सिर्फ जाबिरों के खिलाफ मजबूरों का एहतजाज नहीं है, या हाकिमों के मुकाबले में महकूमों की हिम्मत मर्दाना का इजहार नहीं है। इस जंग को ताकतवर और कमजोरों के दरमियान खुरेजे से भी तावीर करना करीने इंसाफ नहीं, बल्कि उसमें आज़ादी की तड़प और गुलामी के खिलाफ नफरत का आलमी ऐलान भी है। इसमें जमहूरियत की बकाव तहफ़ का ऐलान और आमरीत व शहनशाहियत के खिलाफ ऐलान जंग और करबला के बेआबो गया और चटियल मैदान में लड़ी जाने वाली इस्लामी तारीख की ऐसी जंग है जिसकी मानवियत और इफादियत में माहौसाल की गर्दिश के साथ इजाफा होता जा रहा है। सामान हर्ब ज़र्ब से मुसल्ला यजीदी लश्कर के सामने 70 अफराद पर मुश्तमिल निहत्ते और बेसरोसामा काफले की जंग खैर शर और हक व बातिल के दरमियान ऐसी मारका आरई थी जिसकी आज के तरक्की याफ्ता दौर में, जबकि सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवाओं के खिलाफ सब वस्ता नजर आती हैं, इतनी ज़रूरत है जितनी तारीख के उस जाहिलाना दौर में थी।

0: करना चाहिए, और जो है अल्लाह रसूल का और इस्लाम का और इंसानियत का जो आइडियल है उसको अपनाने के लिए जो है आगे बढ़ना चाहिए। आप हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो किरदार जो है बचपन से, और जिस तरह उन्होंने जो अपने वालिद मोहतरम सैयदना अली करमल्लाह वजू के साथ जो है जिंदगी गुजारी है, और जिस तरह मदीने में रहे, फिर वहां से मक्का गए, फिर वो जो है कूफा के लिए निकले हैं, तो आप हर जगह आप ये देखेंगे कि उनके सामने जो है इस्लामी हुकूमत का और इस्लामी मुआशरे का जो आइडियल था कि जो जिसमें जो है हक की जो है किस तरह जो नुमाइंदगी होना चाहिए और हक परवरी होना चाहिए और हक को किस तरह अख्तियार करना चाहिए, वो हर जगह आपको जो है वो नजर आएगा। वो उनको लगता था कि ये जो है हजरत अमीर माविया के बाद जो है यजीद जो हुक्मरान बना है, तो कहीं ना कहीं जो है जो इस्लामी हुकूमत का आइडियल है और जो बेहतर नमूना है उसको अख्तियार नहीं किया गया है, और इस्लामी हुकूमत जो शूरा पर मबनी है कि अहले हक और अहले इल्म और जो लोग साहबे फहम है उनसे मशवरा करके और इन जो है सबको सामने रखते हुए हुकूमत का जिस तरह एक निजाम बनना चाहिए और जिस तरह जो है जो भी हुक्मरा हो, खलीफा हो, अमीर हो, उसका इंतखाब होना चाहिए, वो नहीं किया गया है। और ये लग रहा है कि ये खानदान का जो है वो पूरी तरह जो है वो कब्जा हो गया है, और जो है पूरी मुस्लिम मिल्लत जो है और इस्लामी मुआशरा जो उसको अलग कर दिया गया है। तो हजरत हुसैन के सामने ये था, लेकिन आपको मुहर्रम के पैगाम से ये भी मिलता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि जो लोग आपको जो है उस तहरीक में शामिल होने के लिए कह रहे हैं वो किस हद तक और जो है मुतमद है। वो हजरत हुसैन के साथ जो कुछ हुआ, अहले कूफा ने पहले दावत दी और जब ये रवाना हो गए तो आप आखिर तक देखें उनकी शहादत तक, जिन लोगों ने जो दावत दी थी, जिन्होंने बुलाया था, वो उनको साथ छोड़ते चले गए, अलग हो गए वो। लेकिन हजरत हुसैन की जिंदगी में आपको जो है वो हक मिलेगा और जो है वो सुलह जुई की जो है वो तलब मिलेगी, सारी चीजें हैं। जब उनको लगा हमको धोखा दिया गया है और ये जिन लोगों ने बुलाया था वो हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है और ये लोग ताकत के सामने झुक गए, तो उन्होंने जो है उन लोगों के सामने तजवीज रखी यजीद और इब्ने ज़ियाद के फौजियों के सामने कि आप जो है हम जहां से आए वहां वापिस जाने दो, या जो किसी मुस्लिम हुकूमत की तरफ हमें जाने दो, यजीद के पास भेज दो। तो ये चीजें आप देखेंगे, ये सुलह की बात है ये, और ये इंसानियत को बचाने की बात है और मुआशरे को बताने की बात है। तो मुहर्रम में जो है जिस तरह हजरत हुसैन ने जो है शहादत दी है, मजलूमाना शहादत जो है, वो ऐसा नहीं था कि वो जो है वो जंग के लिए निकले थे, वो तो एक बेहतर मुआशरे के कयाम के लिए निकले थे। अगर वो जंग के लिए निकलते तो उसी तरह साजो सामान होता, लश्कर होता साथ में, और जो सहाबे कराम जो उनसे कह रहे थे कि जिस तरह जो अहले कूफा ने आपके वालिद साहब के साथ गद्दारी की है और आपके भाई के साथ गद्दारी की है, हमें लगता है कि आपके साथ भी वो लोग ये गड़बड़ करेंगे। लेकिन उन्होंने चूंकि बुलाया था तो वो सामने वाले को जो है हुस्ने ज़न की नजर से जो है वो देखना चाहिए। हजरत हुसैन ने देखा, लेकिन वो गलत लोगों के सामने जो है और जिस चीज को वो गलत समझते थे और वो इस मामले में मुज्तहिद थे वो और ईमान थे वो, उनको ये हक था ये समझने का और ये कहने का भी, उन्होंने इस तरह निभाया उसको। तो ये जो है हमारे लिए ये मिसाल है ये कि अगर जो है हम किस चीज को गलत समझ रहे हैं और वह इस्लामी माशरे के लिए जो है खासतौर से इंसानी माशरे के लिए, इनसे इस्लामी माशरा भी शामिल है, तो आप एक चीज को नहीं देखें, वो पूरे समाज को जो है वो बेहतर जो मिसाल या आइडियल जो माशरा होता है और जो समाज होता है उसको और उस नजरिए को बचाने के लिए निकले थे वो, और जो है लगा जहां उनको लग रहा था कि यहां इन्हराफ हुआ है और लोग जो है वो सही राह से हट गए हैं और जो है वो किसी खास जो है खानदान का, लोगों का, नजरिया का, अमल का जो है समाज में तसल्लुत हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, तो ये बड़ा पैगाम है हमारे लिए कि नेकी के लिए जो है और जो है किरदार को और आइडियल को बचाने के लिए, अगर हमें जो है नस्बुलैन को बचाने के लिए अगर हमें जो है वो जान देनी पड़े और खुदा की राह में जो है वो शहीद होना पड़े, तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। हजरत हुसैन ने अमली तौर पर यह करके दिखाया है
1: जी। मौलाना एजाज साहब, हम चाहते हैं कि इसी बात को आप आगे बढ़ाते हुए अपनी और मजीद कुछ करें।
2: मुहर्रम का महीने में जो आशूरा का दिन है यानी 10वीं तारीख, वो नामालूम कितनी अजमतों का हामिल है, तारीख के कितने अहम वाकयात इस दिन से जुड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया में हजरत हुसैन की मजलूमाना शहादत के एतबार से ये दिन मशहूर है। हजरत हुसैन ने हक़ व बातिल के मैदान में अपने कुर्बानी पेश की है और अपनी मजलूमाना शहादत का वाक़या का ज़हूर हुआ है। दरअसल उस दौर में दीन-ए-इस्लाम

0: हजरत हुसैन के किरदार में और जो मुहर्रम का महीना है वो सब में आपको जो है नमूना मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा, ये जो है सही तारीख जो है, अगर आप जो है तबरी की जो है तारीख उठा के देख ले, अलबदाया व नहाया है इब्न खलदून वगैरह है, या जो है तारीख कामिल है इब्न असीर की, ये सारी चीजें देखें, या हदीस की किताब है, जो सब में आपको जो है अहले बैत का और हजरत हुसैन का जो है वो किरदार आपको सामने आएगा। वो जो है उनके नाम पे जो है अगर आप जो है वो गलत सियासत करते हैं और जो है अपने आप को नुमाया करते हैं और जो है उनके किरदार को अहले बैत को खेल तमाशे में बदलते हैं, ये गलत है। आपको जो है जो उनका किरदार है, अब जैसे मुहर्रम मनाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि हजरत हुसैन की शुजात और बहादुरी का भी एक तरह का इजहार होता है मुहर्रम के मौके पे जो है। तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जो है जो शुजात और बहादुरी है और उसका जो पहलू है उसका इजहार जो है होना चाहिए, जिस तरह जो है हजरत हुसैन और उनके साथियों ने जो है वो रास्ते से लेके खास तौर से मैदान करबला में जो उन्होंने किरदार अदा किया है बहादुरी का, शुजात का, इस्तेकलाल का, सब्र इस्तेकामत का, ये चीजें हमारे लिए जो है वो ज्यादा जो है काबिल अख्ज है। इसी तरह जो है उसका एक पहलू जो है कि आप जो है वो रोजा वगैरह रखें, जो शरी मसला है वो जो है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिदायत भी दी है, और जो है मुश्किल हालात में लोग हैं या जो समाज में जो लोग जो है पिछड़ गए हैं आगे बढ़ने से, उनके लिए जो है भूखों को खाना खिलाना जो है, प्यासों को जो है पानी पिलाना है, और नंगों को जो है कपड़ा देना है, ये जो लोगों की जरूरत में जो है वो काम आने का जो एक जज्बा था अहले बैत में, हजरत हसन में और हजरत हुसैन में, अगर वो उनके किरदार को सामने लाने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है कि अहले बैत का किरदार जो है खुशी के मौके पे और मसरत के मौके पे, गमी की हालत में वो क्या किरदार रहा है, उन्होंने क्या अमल करके दिखलाया है, ये जो है वो ज्यादा अहम है हमारे हिसाब से।
1: जी मौलाना मोहम्मद एजाज साहब, आप इस सिलसिले में क्या
2: बात दरअसल ये कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पूरी कायनात, पूरे आलम को और सारी इंसानियत को एक पैगाम देने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। हजरत हुसैन सिर्फ एक फर्द या एक शख्स का नाम नहीं, वो एक अहद थे, एक जमाना थे, एक कौम और एक लश्कर थे, अहद नबी की एक हसीन यादगार थे। उनका पैगाम अमन मोहब्बत सबके लिए था। उनकी शहादत में सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सारी अक्वाम मिलल के लिए दर्स और पैगाम हयात मौजूद है। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था कि हुसैन की कुर्बानी हर फिरके और कौम के लिए एक मशाल राह है, और हमारे अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने यह कहा कि कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसका साफ मतलब यह है कि हजरत हुसैन का कत्ल उनका कत्ल नहीं, दरअसल उस वक्त के यजीद का कत्ल था। हजरत हुसैन तो मरकर भी जिंदा व जावेद और अमर हैं, और उनके कारनामों के रोशन नकोश तारीख के औराक ही में नहीं बल्कि हर फर्द के जहनों में पत्थर के नक्श की तरह सब्त है। असल कत्ल तो उस यजीद और यजीदी रविश का हुआ जो नवे इंसानी को अपनी सरकशी के सामने सर्वसजूद करने की पॉलिसी को अमल में लाने के लिए वजिद था। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान व यकीन में किसको शक हो सकता है, वो एक सहाबी रसूल थे, मुवहिद थे, सच्चे और पक्के मोमिन थे, वो खुदाई नुसरत और गैबी मदद पर ईमान भी रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने दस्तबाजों पर यकीन किया और हरकत अमल के फलसफे पर अमल किया। उसका इंतजार नहीं किया कि आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, बारह का एक तूफान आएगा और यजीदी काफिला खसो खाशाक की तरह बह जाएगा, या खुदाई जाहो जलाल उन्हें कौम नूह की तरह समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया जाएगा, बल्कि उन्होंने खुदा की मदद पर यकीन रखते हुए बातिल ताकतों से मैदान कारजार में दो बदों में मुकाबला किया और हक की सरबलंदी और फतेहमंदी का आलम दुनिया के नक्शे पर लहराया। आज हमें भी उसी फलसफा हुसैनी पे अमल करने की ज़रूरत है। हक व इंसाफ के हुसूल और इंसानियत के तहफ्फुज़ के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग और गुरेज न करना हमारा नसूलैन होना चाहिए, और ये कहते हुए बातिल के खिलाफ मैदान जंग में कूद पड़ना चाहिए कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। योम आशूरा पर इमाम हुसैन के वाक़े शहादत को याद करने के साथ शहादत व कुर्बानी का एहसास हमें अपने अंदर भी पैदा करना है। ताज़िया मातम की महफिल के बजाय करबला की असल रूह को अपने अंदर पैदा करना है, इसार व कुर्बानी का जज्बा पैदा

0: तो उसके लिए उसको पीछे नहीं हटे, यही पैगाम है शहादत हुसैन का, उसको हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार होना चाहिए।
1: नौमान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे और आखिर में हमारे सामीन के लिए?
2: देखिए मैं ये मानता हूं कि जो है मुहर्रम का जो वसी तर पैगाम है, किसी एक पहलू को नहीं बल्कि तमाम पहलू पे नजर रखते हुए कि जिस तरह जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुहर्रम के ताल्लुक से पैगाम दिया है, हजरत हुसैन ने जो पैगाम दिया है, और बाद के जो हमारे अकाबिर असलाफ ने पैगाम दिया है अंबिया के हवाले से, सहाबा के हवाले से, हजरत हुसैन के हवाले से, वो जो है उस पैगाम को जो है वो लेके जो है चलना चाहिए कि कोई भी चीज है अगर आप उसको किसी अहम चीज को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कुर्बानी की जरूरत है। बगैर कुर्बानी के जो है वो किसी जो है बड़ी जगह जो है आप बड़े मनसब पर जो है और बड़े किरदार को आप जो है वो हासिल नहीं कर सकते हैं।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, शाम के 4 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से संदेश टू सोल्जर रिले किया जाएगा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण वाजपेयी VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन एस्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स 3 सन्स ऑफ माई पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज NCC कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन क्लेयर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज और फिर IMA ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। तो वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा।
0: ओके, मतलब पूरा वो।
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली JNK का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में।
0: ओके,
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी।

0: तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा एंड देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स. तो वहां से
1: जी,
0: एक एकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई.
1: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस वो
0: वो
1: आप
0: वापस घूम फिर के
1: वापस
0: वापस
1: घूम फिर करके आया। लेकिन
0: जी
1: सर, जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि
0: जी
1: जम्मू
0: जी
1: कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए, वो
0: बिल्कुल
1: कैसा था?
0: बिल्कुल. मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है.
1: अच्छा
0: तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे. तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते रहे.
1: अच्छा
0: हाँ जी. तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से.
1: अच्छा
0: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में. तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट इन योर,
1: ओके
0: यस.
1: तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
0: जी. देर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेज. एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है
1: जी
0: तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं.
1: सिचुएशन में
0: तो
1: बिल्कुल।
0: एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट. तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है.
1: बिल्कुल
0: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीज़ें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ वेकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है. तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं.
1: जी
0: ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज वो चीज़ एक थोड़ा सा
1: अलग
0: उसकी अलग
1: लेवल
0: सैंक्टिटी होती है. बट हाँ,
1: जी।
0: फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज़ अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस,
1: ओके
0: बड़ा ही अलग तरीके का.
1: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085.

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफ़ी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी,
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और इसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएँ, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे हमने सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम्पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
0: अच्छा।
1: सो एक बार एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल व्हिच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस, उन्हीं की वो टेबल तक आई। बट इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं, और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो अब पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज इस अच्छा। जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को, उन क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे,
0: पूरा लाइफस्टाइल
1: जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को एस्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल,

0: तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं।
1: ठीक है
0: फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मेस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे
1: जी
0: एंड आई टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि
1: अच्छा
0: झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना
1: अच्छा
0: सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मतलब घुस जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है,
0: जी
1: बड़ा गर्म
0: जी
1: इलाका है,
0: जी
1: तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो
0: जी
1: ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा
0: जी
1: कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके
0: जी
1: साथ, तो क्या
0: जी
1: वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे। हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब
1: तो एक बड़ी टीम हो गई थी
0: एक बड़ी
1: वो।
0: टीम हो गई। द इंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे
1: जी
0: सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में। टू
1: बिल्कुल
0: इनकलकेट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बींग, ना वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं,
1: अच्छा
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पर गई थी। तो आई एम थिंक आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे आगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है, और
0: जी
1: वो फल फूल रहा है और सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहाँ की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज़ सिखाना,
0: जी
1: वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे, और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ये दो लोग होते हैं, उसके साथ
1: अच्छा
0: साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैनेज पर 25 एकड़ से के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को
1: जी
0: शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं।
1: बस
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट, आपके आँख
1: ओके
0: कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके
1: बिल्कुल। और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा के
1: एक
0: लिए।
1: बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा? कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां लगा कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं साहब चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी, बहुत क्लियर थी कि ये
1: करना
0: एक
1: है
0: टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, ठीक है हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीज़ें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
1: हमेशा के लिए, वो
0: हमेशा
1: बन
0: के
1: गया और वो
0: लिए।
1: हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके
0: जी
1: आते
0: जी
1: रहेंगे।
0: जी जी
1: तो ये
0: जी
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
0: मैं बिल्कुल आप बात मैं मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सेटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का। और क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे,
0: जी
1: जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया,
0: जी
1: तो वो जो मोमेंट था?
0: देखिए साहब कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से अपने दम से किया पूरा का पूरा।
1: जी
0: हाँ बस ये था कि तीन तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे उन्होंने
1: जी
0: इसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ए ट्रेमेंडस
1: सर, ये
0: अचीवमेंट।
1: आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था।
0: जी
1: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है,
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: इंटरेस्टिंग रहा हो, तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है। तो
1: जी
0: अपने आप में बस सबसे सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए
1: बिल्कुल
0: आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो
1: बिल्कुल
0: अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज़ से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सर, एक चीज यहां पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे

0: पढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
1: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
0: ठीक है
1: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पाँचवें में
0: ओके
1: हैं,
0: जी
1: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन।
0: ओके
1: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
0: अच्छा
1: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य
0: जी
1: में अप्लाई करें तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं
0: ओके
1: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो
0: जी
1: ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहाँ पर दाखिला होता है। पर
0: जी
1: ये बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं,
0: जी
1: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना
0: डिसिप्लिन
1: डाली जाती है,
0: बिल्कुल
1: ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर अगर
0: बिल्कुल
1: वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग
0: जब
1: महत्वाकांक्षाएं हो
0: जी
1: सकती हैं,
0: करियर को लेकर
1: चॉइस हो
0: के
1: सकती हैं,
0: जी
1: पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
0: यानी
1: जाता
0: कि
1: है।
0: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो
1: जी
0: मजबूत हो जाते
1: बिल्कुल
0: हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही
1: बिल्कुल
0: ऑर्गेनाइज हो जाता
1: यस
0: है।
1: यस
0: तो सर
1: यस
0: इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
1: यस यस अगर गूगल करेंगे तो सैनिक स्कूल एडमिशंस की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल
0: ठीक है
1: सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों की अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है,
0: ठीक
1: जिसपे
0: है
1: कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
0: ओके तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर
1: जी
0: सामने
1: जी
0: आ जाएगा
1: जी
0: उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो 5वीं पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो या
1: या जो
0: जो
1: पास आउट हो चुके
0: हो
1: हैं,
0: चुके हैं
1: हाँ
0: वो
1: 12 साल की लिमिट होती है,
0: 12 साल की
1: तो दस
0: लिमिट
1: से
0: है।
1: 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
0: ओके हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स हम देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माई हार्टेस्ट सल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टूडे एंड जय हिंद टू ऑल आर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टूवर्ड्स द कंट्री। आई बो माई हेड टू देम माई सेल्फ अंजलि दो अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माई मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेज आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहाँ पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ अकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो आई ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स में आकर के संभालना।
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड, से एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमाटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको

0: कुछ सीखनी पड़ी वो।
1: जी। बट हाँ, 3 साल 4 साल हो गए वहाँ पे। उन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रमेंडस। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और बहुत चीज़ों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी वहाँ पे। तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है,
0: ओके
1: एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में।
0: ओके
1: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा। अब ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी करी, काफ़ी
0: जी
1: करी,
0: जी
1: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहाँ पे लाने में, तो उसमें काफ़ी योगदान किया
0: जी
1: गया।
0: तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। जो लखनऊ वाला पीजीआई है, दैट इज़ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट,
0: ठीक है
1: एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट
0: जी
1: एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं, और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडीज भी हैं, जो
0: ओके
1: कि सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग
0: अच्छा
1: एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं,
0: जी
1: जहाँ पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं। ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री,
0: जी
1: ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी होता है,
0: अच्छा
1: सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब
0: ओके
1: संस्थान एक नए लेवल पे जा रहा है, कुछ स्तर पे जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने
0: जी
1: जा रहे हैं,
0: सर,
1: जहाँ
0: अगर हम एक लेमेन के हिसाब से समझें या
1: जी
0: आम
1: जी जी
0: आम भाषा के हिसाब से,
1: जी
0: तो उसको कैसे हम इसको
1: जी
0: समझेंगे कि ये कौन कौन से, आप
1: हाँ,
0: जो जो ये बता रहे हैं आप इन?
1: संस्थान में जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है, कि
0: अच्छा
1: जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे
0: ओके
1: कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई,
0: अच्छा, मतलब जो
1: ट्रीटमेंट्स हो
0: बहुत
1: गए,
0: ही सेंसिटिव या बहुत ही
1: यस,
0: गंभीर वाले।
1: जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो
0: अच्छा
1: इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे
0: अच्छा
1: किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीज़ों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहाँ पे। डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं,
0: जी
1: एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
0: ओके
1: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये यह है कि भाई जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे,
0: जी
1: उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा।
0: सर, लेकिन एक चीज यहां पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे
1: जी
0: बातचीत करते
1: जी
0: हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में आए होंगे,
1: जी
0: ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इनका
1: जी
0: इतने हाईली सेंसिटिव
1: जी
0: जो
1: जी
0: ट्रीटमेंट्स आपने बताए
1: जी
0: उनको और बेहतर से
1: देखिए सब,
0: बेहतर बनाना।
1: दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वॉज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माई ओन डिस्पोजल।
0: जी
1: यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, केपेबिलिटीज और अलग अलग
0: अपने अपने
1: इन्वायरमेंट से
0: काम
1: आती है।
0: कर रही
1: तो
0: है।
1: यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो
0: जी
1: अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है,
0: बिल्कुल
1: ज़्यादा लोग भी हैं। तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे, जंगल में एक तरीके
0: अच्छा
1: से, जहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पे, जहाँ फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे। तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द
0: जी
1: फैक्ट इज कि यस, बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज वॉट कीप्स मी गोइंग।
0: जी
1: जी
0: तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, कि मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
1: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट
0: जी
1: टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू।
0: एग्जैक्टली
1: तो भाई टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा,
0: बिल्कुल
1: रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
0: तो बिल्कुल वो
1: जी
0: जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी
1: फिर
0: भी थमते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं।
1: आगे बढ़ते हैं।
0: सर,
1: बिल्कुल
0: इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग, एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
1: जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक, नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की।
0: ओके
1: अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे।
0: ठीक
1: डॉक्टर्स ने

0: इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
1: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट जी जी, और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
0: हाँ,
1: इसमें फिर किस तरीके का आपको,
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है। तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
0: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की,
0: मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेके चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है
1: वो एक लाइफ
0: स्टाइल
1: और बहुत ही स्पेशल है,
0: समझता हूँ।
1: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो
0: जी।
1: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इनफ, सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है, वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर सो मेनी एप्लीकेंट्स, 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 300-350 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं। तो देयर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाएं, नेवी में जा पाएं, एयरफोर्स में जा पाएं। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे। तो वो एक बहुत बहुत वो दशवा है। एग्जैक्टली
1: सर, एक चीज यहाँ भी बताइएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जैसे आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो। तो एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
1: अच्छा,
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में, और वो अपना एनसीसी का 11th

0: आते, 12th आते आते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है, और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपेयर करने से छूट मिल जाती है।
1: अच्छा,
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द अकेडमी। तो एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपेयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपियर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी। एसएसबी आपने पास कर लिया तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द अकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हम मुझे लगता है कि एनसीसी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं,
1: कम से कम उनके अंदर वो चीज, वो
0: राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट।
1: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोश और जज्बा और देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि हाँ भाई क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है और उसका जानिशार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सर, हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें।
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेडियो पर संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की पसंद का ट्रैक। आप भी इंजॉय करें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से। 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज़ हर जगह है, हर चीज़ में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज़ हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज़ कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सब के जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, चाहे आप किसी चीज़ को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI

0: हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
1: सर ये गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
0: जी
1: हैं?
0: हाँ, नहीं मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ जब नई आती है तो
1: जी
0: इनेबलर होती है, कुछ चीज़ को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं।
1: जी
0: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहाँ पर भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, डायग्नोस्टिक में
1: अच्छा
0: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीज़ों को समझने में। अब जैसे आप छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि
1: ओके
0: आपने MRI करा, आप MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, वो हमेशा चाहिए
1: जी
0: होगा।
1: जी
0: देर ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी,
1: बिल्कुल
0: दैट दैट कैन यू कैन नॉट निगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीज़ों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
1: जी
0: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीज़ों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे
1: जी
0: अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम कैसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, उस पर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है।
1: जी
0: तो आई एम श्योर आने वाले टाइम पर AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे।
1: जी
0: AI
1: जैसे कि
0: विल
1: अक्सर लोग बताते हैं कि सर अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर
0: जी
1: उसको वो
0: जी
1: एनालाइज करता है तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज़ को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद
0: यस,
1: तक
0: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है
1: जी
0: वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और
1: अच्छा
0: स्कोप ऑफ एरर काफ़ी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो
1: बिल्कुल
0: ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये ज़रूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है हम उसके और पास पहुँच सकते हैं। अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस
1: जी
0: कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
1: सर AI पर हमने बात की और AI तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में।
0: जी
1: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए
0: जी
1: बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूँ जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम BK दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर,
0: जी
1: इनका सवाल यह है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
0: जी
1: थी
0: जी जी
1: तो एक बार और प्लीज अगर बताते
0: देखिए,
1: हैं क्या।
0: ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है।
1: जी
0: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं।
1: जी
0: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशन्स की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज़ चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस,
1: अच्छा
0: वो सारा सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को के अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं,
1: अच्छा
0: कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव
1: बिल्कुल
0: टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
1: ओके,
0: जी
1: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और
0: पूरा मिल
1: ऑनलाइन अप्लाई
0: जाएगा।
1: भी आप वहीं से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एन RJ सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी, आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आर नेशन, आई गिव
0: थैंक यू।
1: रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड, वंदे मातरम भारत माता की जय।
0: भारत माता की जय।
1: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं, लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम
0: जी
1: उसी ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल में,
0: जी
1: तो वो सोशल मीडिया के भी काफ़ी काफ़ी हद तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो NDA में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, वो आपने अपने तौर पर जो चीज़ें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
0: जी जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है, जिसके
1: जी
0: पॉजिटिव भी हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है।

0: अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट
1: जी
0: क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक
1: बिल्कुल
0: हाँ, ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से।
1: जी
0: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
1: ओके
0: तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी
1: जी
0: फोन पे ही, इनका इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं।
1: जी
0: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं 5 लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम
1: अपने अपने
0: पे,
1: फोन पर वो
0: या गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पर लगे हुए हैं और रील्स को, उंगली उनकी
1: एग्जैक्टली
0: हिल रही
1: मैं
0: है बस
1: वही पूछने
0: खाली।
1: वाला था सर, ये
0: जी
1: रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो
0: जी
1: चुके हैं
0: जी
1: लोग,
0: जी
1: इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे?
0: देखिए साहब, ये बहुत ज़रूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको, इस पे बैन लगाया
1: बैन
0: है,
1: किए हैं जी
0: दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी, एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
1: बिल्कुल
0: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो
1: जी
0: ये भी अपने आप में इसका बुरी, मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही। आप
1: एग्जैक्टली
0: जैसे
1: आपने
0: मैंने
1: जैसे
0: पहले
1: बताया
0: बोला,
1: जी
0: इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीज़ों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर
1: जी
0: निकल के
1: जी
0: आने
1: जी
0: में
1: जी
0: बड़ी
1: जी
0: तकलीफ हो रही
1: सर
0: है।
1: एक चीज़ ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है, वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता। तो इससे बचने का कोई तरीका है? जो क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब, ये बहुत सबसे ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए
1: जी
0: कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज़ मोबाइल और हर चीज़ लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, किताबें भी ज़रूरी हैं।
1: किताबें जो
0: देखिए
1: है वो
0: साहब, आप
1: ऑनलाइन
0: ए,
1: अगर आ गई
0: ए,
1: तो उसका क्या कर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं?
0: एयरपोर्ट जाइए आप, देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें
1: जी
0: पढ़ते मिलते थे,
1: बिल्कुल
0: मैगजीन्स बिकना बंद हो गई हैं, न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गया है। तो देयर द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा
1: जी
0: सकते दूर उनसे, बट येस, यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है।
1: ये बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन
0: जी
1: पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस
0: हाँ
1: किया है,
0: जी
1: और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए
0: देखिए,
1: ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: फौज में, आर्मी में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं कि
1: अच्छा
0: किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीज़ें, स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे
1: जी
0: इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए। तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई,
1: अच्छा
0: कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
1: अच्छा मतलब
0: हाँ
1: सोशल मीडिया अकाउंट
0: यस,
1: भी
0: अकाउंट
1: नहीं
0: भी
1: बना सकते
0: डिलीट
1: हैं?
0: कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए
1: अच्छा
0: हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है। आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इस चीज़ों से।
1: ओके
0: प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी ईविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है, ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत ज़रूरी है।
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहा है
1: तो
0: लोग।
1: क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए
0: देखिए कुछ चीज़ें
1: जब डेवलप
0: तो
1: कंट्रीज ऐसा कर रही हैं तब?
0: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट
1: जी
0: आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों।
1: जी तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही मोटिवेटिंग है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिससे सुन रहे होंगे
0: जी
1: उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
0: थैंक यू सो
1: तो
0: मच।
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: आपके
0: सो
1: आने
0: मच
1: के लिए।
0: जी।
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे, कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ज़ोन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 5 बजे हैं। युवा साथी सुनिए अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युववाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज अपने रेडियो दोस्त मनोज का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे आओ जाने जैसलमेर को, भारत की मुख्य नदियां, जीवन में विचारों का महत्व, सभ्यता स्थल कालीबंगा और आज का इतिहास पर। श्रोताओं, इन विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं तौशिफ अख्तर की आवाज में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का ये गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने और शुरू में ढाला है नदीम शरवण ने।

श्रोताओं, जैसलमेर के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1156 ईस्वी में राव जैसल द्वारा की गई थी। जैसलमेर राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इसकी पीले बलुआ पत्थर की इमारतें सूर्य की रोशनी में सुनहरी दिखाई देती है। यह शहर थार मरुस्थल के बीच बसा है और अपनी संस्कृति, किलों और रेतीले धोरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों पर बात करें तो जैसलमेर का किला, 12 जुलाई 1155 को इस दुर्ग की नींव महाराव जैसलमेर द्वारा रखी गई। दुर्ग का थोड़ा ही भाग बना कि महारावल जैसल की मृत्यु हो गई और बाद में उनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने इसे पूरा करवाया। साथियों, इस दुर्ग को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, जसानगढ़, राजस्थान का अंडमान और रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है।

चित्तौड़गढ़ के पश्चात यह राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। यह दुर्ग अपने 250 साकों व 99 बुर्जों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह दुर्ग पीले पत्थरों से बना होने के कारण सोने के समान प्रतीत होता है। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार अक्षय पुल है। श्रोताओं, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे ही चाहिए। 21 जून 2013 को इस किले को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। अब बात करते हैं सम के रेतीले धोरों पर। श्रोताओं, यहां ऊंट सफारी और रेगिस्तानी संस्कृति का आनंद लेने के लिए सम जैसलमेर का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। पटुओं की हवेली पर बात करें तो ये अपनी सुंदर नकाशी और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। गढ़सीसर झील शांत वातावरण और नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। घूमने का सबसे अच्छा समय यहाँ अक्टूबर से मार्च के बीच का समय जैसलमेर घूमने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है। जैसलमेर अपनी राजस्थानी संस्कृति, लोक संगीत, ऊंट सफारी और सुनहरे रेतीले धोरों के कारण भारत के सबसे बड़े आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए फिल्म नन्हे जैसलमेर से ये गीत। इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम ने।

दोस्तों, बात करते हैं भारत की मुख्य नदियों पर। भारत की नदियां देश की कृषि, पेयजल, जल विद्युत और संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख नदियां गंगा, जो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी आदि भारत की प्रमुख नदियां हैं। नदियों के प्रकार पर बात करें तो नदियां दो प्रकार की है, एक तो हिमालय से निकलने वाली और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत से। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। इनमें वर्ष भर जल रहता है। प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती है। ये नदियां मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। नदियों के महत्व पर बात करें तो सिंचाई और कृषि के लिए जल प्रदान करती है, पेयजल का प्रमुख स्रोत है, जल विद्युत उत्पादन में सहायक है और धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गंगा भारत की सबसे पवित्र और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। श्रोतों, लीजिए अब सुनिए फिल्म जीत का ये गीत। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की।

0: infertility. Every couple dreams of having a family, and for many, infertility creates a silent delay. Clinically, infertility means not achieving pregnancy after 1 year of trying. It affects 1 in 6 couples. Remember, it's never just a women's issue. Both partners are equal here. From lifestyle changes to advanced medical therapies like IVF, infertility treatments are available. It's time to break the stigma and start the conversation and seek timely medical advice. Let us come together to be a voice for complete families. Thank you.
1: Issued in public interest by Zenova, a division of Gufic Biosciences.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में बात करते हैं जीवन में विचारों के महत्व पर। मित्रों, मनुष्य के जीवन में विचारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विचार ही मनुष्य के व्यक्तित्व, व्यवहार और भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बनता है। सकारात्मक विचार मनुष्य को सही मार्ग पर चलने, कठिनाइयों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। अच्छे विचार मन में सद्भाव, प्रेम, दया, सहानुभूति और ईमानदारी जैसे गुणों का विकास करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और निराशा को जन्म देते हैं, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। दोस्तों, महान व्यक्तियों ने अपने उच्च विचारों और आदर्शों के बल पर समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक और श्रेष्ठ विचारों को अपनाना चाहिए तथा बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। विचार मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। अच्छे विचार सुख, सफलता और सम्मान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः हमें अपने विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और उच्च बनाए रखने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म हिना से ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की। गीत और संगीत राजेंद्र जैन का है।

श्रोताओं, बात करते हैं कार्यक्रम में सभ्यता स्थल कालीबंगा पर। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। यह काली और बंगा नामक दो शब्दों से मिलकर बनी है। काली का अर्थ है काला और बंगा का अर्थ है चूड़ियां। यहां से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता का नाम कालीबंगा पड़ा। इस सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा प्राचीन सरस्वती और वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे की गई थी। 1961 में बीबी लाल और 1969 में बीके थापर के निर्देशन में यहां खुदाई की गई। एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन आदि इस खुदाई में इनके सहयोगी थे। इस सभ्यता के कालक्रम पर बात करें तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का कालक्रम माना गया है। साथियों, सभ्यता की विशेषताओं पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है तेरे नाम।

दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की विशेषता पर बात करें तो खुदाई में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। खुदाई में 2 टीले मिले हैं, जिनमें पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जहाँ सामान्य जनता निवास करती थी, इसे नगर टीला भी कहा जाता है। पश्चिमी टीले पर बात करें तो यह दुर्ग टीला कहा जाता था, यहाँ कुलीन लोग निवास करते थे। विश्व में एकमात्र सभ्यता स्थल जहाँ लकड़ी की नालियाँ मिली है, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंट, स्नानागार, चबूतरा, मिट्टी के बर्तन और हाथी दांत का कंघा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद

इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग सर्जरी करना भी जानते थे। इस सभ्यता के दक्षिण पूर्व में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें एक खेत में दो फसलें चना व सरसों बोई जाती थी। मित्रों, गेहूं व जौ यहां की प्रमुख फसल थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। कालीबंगा संग्रहालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी।

0: families. Every couple dreams of having a family. For many, infertility creates a silent delay. Clinically, infertility means not achieving pregnancy after a year of trying, affecting 1 in 6 couples. Remember, it's never just a woman's issue. Both partners are equal here. From lifestyle changes to advanced medical therapies like IVF, infertility treatments are available. It's time to break the stigma, start the conversation, and seek timely medical advice. Let us come together to be a voice for complete families.
1: Issued in public interest by Zenova, a division of Gufic Biosciences.
2: श्रोतों, कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज के इतिहास पर। तो आज ही के दिन 25 जून 1975 को भारत में भारतीय आपातकाल की घोषणा की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। 1983 में विश्व कप फाइनल में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार विश्व कप जीता। इस समय कप्तान थे कपिल देव। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन 2009 में प्रसिद्ध गायक और डांसर माइकल जैक्सन का निधन हुआ था। श्रोतों, आज ही के दिन 1900 में माउंटबेटन का जन्म हुआ और आज ही के दिन 25 जून 1974 को हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री करिश्मा कपूर का मुंबई में जन्म हुआ था। श्रोतों, लीजिए अब सुनिए फिल्म टू स्टेट का ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं करिश्मा कपूर के जन्मदिन पर उनकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सराइकी। संध्या 6:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। आज संध्या 7 और रात्रि 9:15 पर आप सुन पाएंगे ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ड्यू कमेंट्री का प्रसारण।

रात्रि 8:45 पर आप सुन पाएंगे हमारी दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, 9 बजे News@9। रात्रि 10:45 पर आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से फिल्म संगीत। रात्रि 11 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और आज की हमारी ये सभा संपन्न होगी रात्रि 11:10 पर।

श्रोताओं एक बार फिर से आपको बता दें, आज शाम 7 बजे और रात्रि 9:15 पर आप सुन पाएंगे ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, आकाशवाणी का ये कॉर्ड।

कार्बन यानी CFC है। गैस ही गैस की इजाद सन 1930 में थी है। ही गैस का इस्तेमाल फ्रिज, एयर कंडीशनर, एरोसोल दे डब्बे का निर्माण, कारखाने में सफाई और कुछ किस्में दे प्लास्टिक फैन तैयार करने वास्ते किया वेंदे। CFC रसायन की उम्र 125 तो 140 साल की थी सकती है। CFC ओजोन की ऑक्सीजन को खत्म कर देती है और एक नवे रसायन क्लोरोमोनोक्साइड को पैदा करेंदी है। अमरीकन रसायन शास्त्री सई शेरवुड रोलैंड उन्होंने भाईवाल सई मारियो मालिस ने सन 1974 में पहली दफा इन रसायनों तो ओजोन की छतरी के नाश थीवन की चेतावनी दी है। उन्होंने मुताबिक क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन गैस दे 1,00,000 परमाणुओं को खत्म करन दी ताकत रखेंगे। ही मुश्किल का सामना करन वास्ते सन 1987 विच दुनिया दे 47 मुल्कें ने यह समझौता किया कि सन 1992 तक सारी दुनिया विचों CFC का पैदावार अद्धा कर दिता वंजे। लेकिन हिंदे बाद तेजी नाल ओजोन छतरी की बर्बादी की खबर मिलदे ही सन 1999 विच 81 मुल्कें दी बैठक विच सन 2000 तक CFC का उत्पादन पूरी तरह बंद कर देवण की सिफारिश की गई। लेकिन हिंदे बावजूद कई मुल्कें विच CFC की पैदावार जारी है। उनकी वजह यह है कि CFC का विकल्प बहु महंगा है। तरक्की याफ्ता मुल्क ता इंदा खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तरक्की पजीर यानी डेवलपिंग कंट्रीज वास्ते ये खर्चा उन्होंने वास्ते गाल कहनी। तरक्की पजीर मुल्क CFC दे खतरे को ना तो समझते अते ना ही उन्होंने कोई चेता है। तरक्की याफ्ता मुल्क ने ही काम वास्ते एक फंड बनावन अते तरक्की पजीर मुल्कें को इमदाद देवन दा फैसला किता अते शुरू विच 16 करोड़ डॉलर दी रकम दीती। बाद विच ए रकम वध के 24 करोड़ डॉलर थी गई। 1991 विच ए महसूस किता गया कि तरक्की याफ्ता अते तरक्की पजीर मुल्कें दे आपसी ताउन बगैर ए समस्या हल कहना थी सी। चुनाचे 1991 विच CFC दे खात्मे वास्ते एक भी संस्था ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी GEF यानी विश्व पर्यावरण सुविधा दा संगठन बनाया गया। सन 1994 विच हिंदा दायरा वधाया गया जैंदे विच CFC दी पैदावार को रोकना, समुद्रे दी पूरी तरह हिफाजत, ओजोन छतरी की हिफाजत अते जैविक विविधता की रक्षा विच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को वधावन शामिल है। जांदा कंट्रोल एक परिषद करेंदी है। हर 3 साल बाद थीवन वाली बैठक विच नीतियां असूलां आम सभा विच इत्तफाके राय नाल बनाए वेंदन। 1991 विच ही संगठन विच तरक्की याफ्ता अते तरक्की पजीर मुल्के ने 2 अरब डॉलर इकट्ठा करन दा वचन दिता अते हुण GEF कोल 5 अरब कोल वध रकम जमा है। तरक्की याफ्ता मुल्क ही फंड विच दान करेंदन अते हुंदे कोल इनवायरमेंट दी हिफाजत वास्ते इमदाद घिंदन। हिंदुस्तान ने ही फंड विच 30 करोड़ डॉलर दित्तन अते 14 करोड़ तो वध दी इमदाद गिधी है। ही काम वास्ते आलमी बैंक ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI को 105 करोड़ रुपए देवन दा ऐलान किते ताकि हिंदुस्तान विच सन 2010 तक CFC दी पैदावार पूरी तरह बंद कर दीती वंजे। लेकिन ये रकम बहु घटे अते हिंदुस्तानी माहिरां दे मुताबिक लगभग 4,000 करोड़ रुपए दी लोड़ पौसी। साडा देश ही इंसानी फर्ज को पूरी तरह समझदे अते CFC दी पैदावार को पूरी तरह बंद करन वास्ते अगों आए। ओजोन छतरी दी हिफाजत पूरी इंसानियत दी हिफाजत है, पूरी दुनिया दी हिफाजत है। ये कम सारे मुल्कें दे आपसी तावन अते भाईचारे नाल पूरा थी सी अते ही में कम

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, गुरुग्राम में शुरू हुई ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और नवाचार पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री

0: पीवी प्लांट का उद्घाटन किया और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मॉनसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट मजबूत ढांचे और भंडारण प्रणाली पर तेजी से काम कर रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर मंथन किया जा रहा है। ये बैठक कल भी जारी रहेगी। देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ के मौके पर लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि बढ़ाकर 25,000 रुपए मासिक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उन्हें चिकित्सा मद में 5,000 रुपए माहवार भी दिए जाएंगे।
1: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने, हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपए और 5,000 रुपए चिकित्सा के 30,000 रुपए आज से आपको मिलेंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सवाईमाधोपुर में अभियोजन भवन का लोकार्पण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए इस भवन में राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया। इस अवसर पर श्री बिरला ने अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में दंड संहिता को न्याय संहिता में बदलने से न्यायिक प्रक्रिया त्वरित, सहज और सुलभ हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब तबके को समय पर न्याय दिलाना अभियोजन की प्राथमिकता है।
2: ये दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई तकनीकी विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके, उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक लैब बनी है।
0: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने राजस्थान पीटीईटी 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। इससे राज्य के 900 से अधिक बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में वीएमओयू क्षेत्रीय कार्यालय से ये नतीजे जारी किए। उन्होंने अव्वल रहने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। उधर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी आज जारी किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में शिक्षा संकुल से ये नतीजे जारी किए। इस अप्रैल और मई महीने में हुए इस परीक्षा में लगभग 83 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षा करवाने में स्टेट ओपन बोर्ड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
3: स्टेट ओपन बोर्ड में पहला स्थान हमने पूरे देश में प्राप्त किया है। अच्छा, जो है मार्कशीट और प्रवेश पत्र, जिसमें कई बार डमी कैंडिडेट भेजते हैं, तो उसमें हमने QR कोड लगाया है। प्रवेश पत्र पे जैसे ही उस कोड को आप स्कैन करेंगे, उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी और मार्कशीट की भी, तो ये फुल प्रूफ है। एक तरह से इसको करने का पूरा प्रयास किया है। तो आज हम लगभग 84,966 बच्चों का रिजल्ट आज निकालेंगे।
0: शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक

0: किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज पाली जिले के सादड़ी में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों और गौरक्षा आंदोलन के बारे में अपने विचार साझा किए। इसके बाद श्री बागड़े राजसमंद के कुंभलगढ़ पहुंचे। उन्होंने दुर्ग परिसर स्थित महाराणा प्रताप की जन्मस्थली का अवलोकन किया। श्री बागड़े ने दुर्ग अधिकारियों को आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पेज पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री पीवी प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम कुसुम योजना के तहत 600 केवी क्षमता वाले इस मॉडल से किसान सोलर पैनल से बिजली बनाने के साथ आसानी से फसल भी उगा सकते हैं। इस मौके पर श्री नागर ने कहा कि इस नई तकनीक में सोलर पैनलों को ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इससे फसलों तक भी पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी पहुंच रही है। इस मॉडल से किसान बिजली से अतिरिक्त आय के साथ फसल उत्पादन आसानी से जारी रख सकेंगे।
1: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्सी के पास में कुंदनपुरा गांव में, और वहां उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके और एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है, और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर सोलर से जो बिजली पैदा होती है उस भी आय बढ़ा ले। ये एक अच्छा इनोवेशन है और इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और इस किसानों को और इसकी तरफ प्रेरित करते हुए इस पर काम करने की अभी आगे जरूरत है।
0: राज्य में बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और किसान अनुकूल बनाया जाएगा। आज जयपुर में पंत कृषि भवन में राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था के संचालन मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कृषि और उद्यानिकी सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक पर और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर।
2: प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बीज प्रयोगशाला जांच और ग्रो आउट टेस्ट GOT नमूना जांच को समानांतर रूप से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बीज प्रमाणीकरण के लिए लागू क्रॉप कैलेंडर में आवश्यक बदलाव करने का फैसला भी किया गया है। इससे विभिन्न फसलों के बीज समय पर प्रमाणित होकर किसानों को मिल सकेंगे और खेती किसानी में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
0: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 5-7 दिनों में और सक्रिय होने तथा पूर्वी और मध्य भारत में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इस बीच राज्य में भी प्री मानसून गतिविधियां जोर शोर से जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ झोंकेदार हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बरसात का सिलसिला बने रहने के आसार हैं। पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच आज दोपहर में राजधानी जयपुर में मौसम बदला और आंधी के साथ करीब 1.25 घंटा तेज बरसात हुई। झमाझम बारिश से शहर में कई जगह पानी भर गया। उधर कोटपुतली बहरोड में भी धूल भरी आंधी के साथ रिमझिम बारिश का दौर चला। कल भरतपुर, नागौर, सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर के कुछ हिस्सों में 1-1 इंच और उससे ज्यादा पानी बरसा। निर्जला एकादशी के अवसर पर प्रदेश भर में आज श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दिन भर दान पुण्य का दौर चला। जगह जगह सामाजिक संगठनों और लोगों ने छबील लगाकर राहगीरों को शीतल पेय वितरित किए। निर्जला एकादशी पर जल सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं मुहर्रम का पर्व कल मनाया जाएगा। ये इस्लामिक नववर्ष के 10वें दिन आशूरा को मनाया जाता है। करबला की

0: जंग में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में ये दिन अकीदत के साथ गमगीन माहौल में मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिए भी निकाले जाते हैं। राजधानी जयपुर में मुहर्रम के मौके पर करीब 300 छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा, जिन्हें देर रात कल करबला मैदान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के पर्व मुहर्रम को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। पाली के गिरीश रल और राहुल बारेसा ने वेस्ट जोन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में हुए इस स्पर्धा में गिरीश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं राहुल ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से बढ़ाया गया है, जिससे नकली और घटिया दवाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इसके QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे में दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू हुई। ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और नवाचार पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि बढ़ाकर ₹25,000 करने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर के कुंदनपुरा में देश के पहले आधुनिक एग्री PV प्लांट का उद्घाटन किया और प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक प्री मॉनसून गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी ने कल अपना 785वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुरुआत गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर जिले की सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो और चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में ड्रोन कैमरे से ली गई तारागढ़ किला, रानी जी की बावड़ी, नवल सागर, जैत सागर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरों को लोगों ने देखा। बूंदी चित्रशैली पर आधारित चित्रों ने जिले की सांस्कृतिक पहचान को भी सामने रखा। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल बूंदी जिले के 885 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें 788 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से और 97 वरिष्ठ नागरिक हवाई मार्ग से विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। यात्राओं का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जिले भर में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में लग रहे इन शिविरों में पात्र लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों से जुड़ी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। भूमि संबंधी प्रकरण, पट्टे, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने विभिन्न शिविरों का पिछले दिनों निरीक्षण किया और अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। बड़ी संख्या में लोग इन शिविरों का लाभ उठा रहे हैं। पिछले दिनों जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को हर घर नल कनेक्शन, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पेयजल सुविधा समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्यों को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही जल योजनाओं की नियमित निगरानी करने को कहा गया। मॉनसून के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला कलेक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर नालों की सफाई का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बारिश शुरू होने से पहले सभी नालों की सफाई पूरी कर ली जाए ताकि जल

0: भराव की स्थिति नहीं बने। जहां आवश्यकता है वहां नालों के सुधार और मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे कचरा नालों में नहीं डालें और शहर को साफ रखने में सहयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह खेल संकुल में हुआ। इससे पहले 50 दिनों तक योग जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों और विभिन्न संस्थानों में नियमित योगाभ्यास कराया गया। बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने इनमें भाग लिया। योग प्रशिक्षकों ने लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में जिले में तेजी से काम हो रहा है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों को बेहतर फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे इंटरनेट सेवाएं अधिक सुचारू होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। महिला अधिकारिता विभाग ने जिले की कुछ ग्राम पंचायतों में साथिन के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक महिलाएं निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। विभाग ने पात्र महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इधर दिव्यांगजन के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को आसान आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। मौसम में बदलाव के साथ किसान खेतों में खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में जुट गए हैं। कृषि विभाग किसानों को समय पर बुआई, उन्नत कृषि पद्धतियों और फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहा है ताकि नई फसल की शुरुआत बेहतर तरीके से हो सके। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत री सदारत माए ब्रिक्स देशारा ऊर्जा मंत्रियों री मीटिंग गुरुग्राम माए सरूफी। ऊर्जा सुरक्षा, लगातार विकास और नवाचार रबारा माए विचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियों री हर महीना दी जावन वाली सम्मान निधि बधार 25,000 रुपया करण रो ऐलान कीनो। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जयपुर रा कुंदनपुरा माए देश रा पहला आधुनिक एग्री पीवी प्लांट रो उद्घाटन कीनो। और प्रदेश माए आवता 4-5 दिन ताई चौमासाओं पहली री हलचल चालते रहवन रो अनुमान। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल कहो है कि ऊर्जा माली, सामाजिक बरकत और इंसान रा विकास सारू घनी खास है। वे आज गुरुग्राम माए ब्रिक्स देशां रा ऊर्जा मंत्रियों री 11वीं मीटिंग माए बोल रहा हा। ऊर्जा मंत्री कहो कि लगातार विकास सारू किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा जरूरी है। वह कहो कि भारत आवता भगत माए ऊर्जा हल्का सारू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट मजबूत ढांचा और भंडारण प्रणाली माथे तेज यूं काम कर रियो है। मनोहर लाल कहो कि देश माए हाल ताई बिजली रा 6 करोड़ों बत्ता स्मार्ट मीटर लगातिया चिया है। ब्रिक्स देशारा नुमाइंदा री आ मीटिंग काली फैला। साल 1975 माए देश माए लगाई चिया आपातकाल री वर्षगांठ रे मौके आज लोकतंत्र सेनानियां ने नमन करी चियो। ई मौके राजधानी जयपुर माए लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह राखी चियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ई कार्यक्रम माए शामिल थिया। ई मौके मुख्यमंत्री लोकतंत्र सेनानियां री मान निधि री रकम बधार 25,000 रुपया महीना करण रो ऐलान कीनो। वह कहो कि ईसा गई लोकतंत्र सेनानिया ने इलाज सारोई हर महीना 5,000 रुपया दिया जावेला।
2: लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को हमने, हमारी प्रदेश की सरकार ने उसको भी बहाल किया। अब हम प्रदेश की सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता देते हैं। आज से हम इसको 25,000 रुपये और 5,000 रुपये चिकित्सा के 30,000 रुपये आज से आपको मिलेंगे।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर माए अभियोजन भवन जनता ने सौंपियो। कलेक्ट्रेट परिसर माए बनाई जाई भवन माए राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन रो शपथ लेवन रो जलसोई राखी चियो। ई मौके श्री बिरला अभियोजन प्रकरण

0: प्रबंधन प्रणाली री शुरुआती कीनी। वे कहो कि देश माए दंड संहिता ने न्याय संहिता माए बदलनो न्याय देवण रो काम तेज और आसान भी है। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि समाज रा गरीब तबका री जनता ने टेम सर न्याय दिलावण माथे अभियोजन रो खास ध्यान है।
1: ये दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई तकनीकी विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक लैब बनी है।
0: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान पीटीईटी परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। इनु राज्य रा 972 बीएड कॉलेजा में दाखिला दिया जावेला। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा जयपुर में वीएमओयू रा क्षेत्रीय कार्यालय नतीजा जारी कीना। इ मौके वे अव्वल रहा विद्यार्थियों ने फोन कर बधाई दीनी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ही 10वीं और 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर रा शिक्षा संकुल नतीजा जारी कीना। अप्रैल मई 2026 माए भी ई परीक्षा माए करीब 83 लाख विद्यार्थी बैठ्या। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल री सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा बतायो कि ओपन स्कूल नियमित स्कूल शिक्षा हासिल नहीं कर सकया विद्यार्थियों ने पढ़ाई करावन रा मकसद नो काम करे है। वह कहो कि ओपन स्कूल छोड़ देवन वाला बच्चा री तादाद कम करण माए मददगार साबित हो रहा है। अरुणा शर्मा कहो कि ऑन डिमांड परीक्षा करावन रा हल्का माए स्टेट ओपन बोर्ड देश माए अव्वल रहो है।
2: स्टेट ओपन बोर्ड में पहला स्थान हमने पूरे देश में प्राप्त किया है। अच्छा जो है मार्कशीट और प्रवेश पत्र जिसमें कई बार डमी कैंडिडेट भेजते हैं तो उसमें हमने QR कोड लगाया है। प्रवेश पत्र पे जैसे ही उस कोड को आप स्कैन करेंगे उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी और मार्कशीट की भी, तो ये फुल प्रूफ है एक तरह से इसको करने का पूरा प्रयास किया है। तो आज हम लगभग 84,966 बच्चों का रिजल्ट आज निकालेंगे।
0: शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सारू ऑनलाइन तरीका अर्जियां मांगी है। अर्जियां राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल मथे 10 जुलाई ताई दाखिल करी जा सके है। स्कूल शिक्षा रा हलका माए बेहतरीन काम नुआ काम और समर्पण रो दर्शाव करण वाला अध्यापका ने हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देर नवाजा जावे है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पाली जिला रा सादड़ी माए राखी जिया एक धार्मिक कार्यक्रम माए संता और गौ रक्षा आंदोलन रबारा माए विचार बताया। इन पाछे वे राजसमंद जिला रा कुंभलगढ़ किला माए महाराणा प्रताप रा जन्म रिठौड़ी देखी। श्री बागड़े अहलकारा ने किला माए आवन वाला सैलानिया सारू सुबिता बधावन रा हुक्म दीना। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। जयपुर के न कुंदनपुरा गांव में देश रो पहलो आधुनिक एग्री पीवी प्लांट लगाईचियो है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन रो उद्घाटन कीनो। पीएम कुसुम योजना रा तहत 600 किलोवोल्ट बूता वाला ई मॉडल किसान सूरज री रोशनी बिजली बनावन सागे आसानी साखा ले सकेला। ई मौके श्री नागर कहो कि ई नवी तकनीक माए सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना ऊंची लगाई जावे है जिनो किसान बिजली पैदा करण अतिरिक्त आमदनी सागे साखा ले सकेला।
3: किसान ने जो अपनी 600 किलोवाट का प्लांट था वो बस्सी के पास में कुंदनपुरा गांव में, और वहां उस किसान ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को हाइट दे करके और एक नवाचार किया है, उसको लगभग 11 फीट तक ऊंचा उठाया है और उसके बाद उसने उसमें खेती करना प्रारंभ किया है कि किसान अपनी उपजाऊ खेती में भी सोलर प्लांट लगा करके उसकी हाइट बढ़ा करके नीचे अपनी खेती कर ले और उसके ऊपर सोलर से जो बिजली पैदा होती है उस भी आय बढ़ा ले। ये एक अच्छा इनोवेशन है और इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और इस किसानों को और इसकी तरफ प्रेरित करते हुए इस पर काम करने की अभी आगे जरूरत है।
0: राज्य में बीजा ने प्रमाणित करण रो काम और साफ कोई सागे और किसान अनुकूल बनायो चावेला। राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था रा संचालन मंडल री आज जयपुर माए भी मीटिंग माए ओ फैसलो करीचियो। कृषि और उद्यानिकी सचिव मंजू राजपाल री सदारत माएफी मीटिंग माए बीज प्रयोगशाला जांच और ग्रो आउट टेस्ट जी ओ

0: नमूना जांच न एक सग चलावण रो फैसलो करी चियो। इन सागई बीज प्रमाणीकरण सारू लागू क्रॉप कैलेंडर माए जरूरी बदलाव रो फैसलो ये करी चियो। अरब मौसम चौमासारी बिरखा सरू फेवणु पहली राज्य माए आवता चार पांच दिन ताई कठ कठ गरज चमक साग जोरदार बायरो बाजण और बरसात फेवण रा आसार है। आवता महीना रा पहला सप्ताह माए प्रदेश रा कई हल्का माए बिरखा बधबा रा आसार है। इन बीच आज दोपहर पाछे राजधानी जयपुर माए आंधी चालन सागे करीब पौन घंटा ताई झमाझम में बरसियो जिणु कई ठोणा पानी फरक्यो। कोटपुतली बहरोड़ माए आंधी चालन सागे छाटो छिड़को भियो। काल भरतपुर नागौर सीकर चूरू और श्रीगंगानगर रा कुछ हल्का माए एक एक इंच और वाऊ बत्ती बिरखा भी। निर्जला ग्यारस रे मौके आज आखा राज्य माए जात्रु दान पुण्य कीना नैरी नैरी ठोड़ा सामाजिक संगठना और दूजा लोगों ने ओरों छबी लगार राहगीरा न ठंडो पाइचियो। निर्जला ग्यारस न जल सेवा रो खास महत्व मान्यो जावे है। दूजी गानी मुहर्रम काल मनायो जावेला ओ इस्लाम नुआ साल रा दसवां दिन आशूरा न मनायो जावे है। करबलारी जंग माए हजरत इमाम हुसैन अरवारा साथियां रे शहादत री याद माए ओ दिन अकीदत सागे गमगीन माहौल माए मनायो जावे है। ये मौके ताजियाई निकालिया जावे है। राजधानी जयपुर माए मुहर्रम रे मौके छोटा मोटा करीब 300 ताजियां रो जुलूस निकालियो जावेला। ताजिया मोड़ी रात करबला मैदान माए सुपुर्दे खाक करिया जावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े मुहर्रम शांति सागे मनावन रिया रचकीनी है। वेस्ट जॉन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग होड़ माए पाली रा गिरीश रल सोनारो और राहुल बारेसा कांसारो तमको जीत्यो है। आहोड़ छत्तीसगढ़ रा बालोद माए भी ही। देश माए पोलियो री बीमारी न जड़ों खत्म करन रा मकसद चलाया जा रहा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रा तहत 28 जून दीतवार ने 5 साल ताई रा बच्चा ने पोलियो बचाव री दवा री खुराक पाई जावेला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रे मुजब राज्य रा सगला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र और खास तौर हूँ बनाई जिया पोलियो बूथा मत आ खुराक पाई जावेला। दीतवार ने दवाई नी पीवन वाला बच्चा ने 29 और 30 जून ने स्वास्थ्य कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जार आ खुराक पावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे काल ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। नंबर ओ जू सुन ले राव सा 1800117800। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले राव। भारत री सदारत माए ब्रिक्स देशां रा ऊर्जा मंत्रियां री मीटिंग गुरुग्राम माए सरूफी। ऊर्जा सुरक्षा लगातार विकास हर नवाचार रा बारा माए विचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियारी हर महीना दी जावन वाली सम्मान निधि बधार 25,000 रुपया करण रो ऐलान कीनो। ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर जयपुर रा कुंदनपुरा माए देश रा पहला आधुनिक एग्री PV प्लांट रो उद्घाटन कीनो। और प्रदेश माए आवता 4-5 दिन ताई चौमासाओं पहली री हलचल चालती रहवण रो अनुमान। इसागई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोतों आज संध्या 6:30 से रात्रि 10:45 तक आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। इस मैच का प्रसारण DRM चैनल मीडियम वेव एवं FM बैंड पर किया जाएगा। संध्या 6:30 से 7 बजे तक और रात्रि 8:45 से रात्रि 9

पहुंचकर 15 मिनट तक समाचारों के दौरान मैच का प्रसारण मीडियम वेव एवं एफएम पर रोका जाएगा। न्यूज ऑन एयर ऐप पर मैच का प्रसारण नहीं किया जाएगा। इस दौरान ऐप पर फिलर का प्रसारण हमारे स्टूडियो से किया जाएगा।

0: Lovely, Nigam. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार

0: हर समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: Partnership with UK is taking many more dimensions.
0: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
1: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त

0: किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के CEO एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
2: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग जोखिम लेने

0: की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म दिल एक मंदिर के इस गीत के साथ। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

श्रोतों लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत कल्याण जी, माफ कीजिएगा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है सीता और गीता।

0: श्रोताओं, फिल्म सीता और गीता के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजे हैं। रिजब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली

0: आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendment Rule 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,000.